सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:55 हुए हैं। अपने समस्त श्रोताओं का अभिवादन करते हुए आरंभ करते हैं आज की प्रथम प्रसारण सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का

0: फेंकी ना।
1: आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
3: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
1: आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: सुबह का समय एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नई शुरुआत का संकेत होता है। और जब यह शुरुआत हो ईश्वर की भक्ति से, तो पूरा दिन मन शांत और कर्म सुफल और जीवन मधुर बन जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना और मैं हूं आपकी होस्ट अन्नपूर्णा। आइए सुनते हैं ये पहला भजन।

सुबह की शांति में जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो मन संसार की चिंता से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए बस मन को थोड़ी देर खाली करना होता है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही मन को भी आध्यात्मिक ऊर्जा से हमें चार्ज

मनुष्य का मन उसके बंधन का कारण है और वही मन उसकी मुक्ति का भी कारण है। यदि मन संसार में उलझेगा तो दुख मिलेगा, और यदि यही मन ईश्वर में लगेगा तो शांति अपने आप में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: श्रोताओं, यही तो भक्ति है जो मन के भीतर के अंधकार को

हटाकर ईश्वर के प्रकाश को महसूस कराए। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और भय से अमर शांति की ओर ले चलें।

0: ईश्वर को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। भक्ति वही अनुभव है जो मन को शांत और जीवन को सुंदर बना देता है। इसी मंगल भावना के साथ वंदना कार्यक्रम में लेते हैं यही पे विराम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन बिंदु।
1: सब जानने वाले हैं प्रभु, प्रभु से कुछ नहीं छिपता। हमको ये लगता है कि हम अंतर्मन में कुछ और, बाहर से कुछ और रहें, तो जो लोग नहीं देख पाते वह परमात्मा भी नहीं जानते होंगे। ऐसा संभव नहीं है, वह दृष्टा है, वह सब देख रहा है, उससे कुछ छिप ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जब अपने कुछ सैनिकों के साथ बिभीषण जी प्रभु के पास आए, सभा लगी है, सारे लोग बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार बैठे, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान जी महाराज, सारे लोग बैठे हैं। राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम सेनाध्यक्ष हो, तुम बताओ कि विभीषण को अपनाना है कि नहीं अपनाना है। तो उन्होंने कहा, नहीं, दुश्मन का भाई है, हो सकता है भेद लेने आया हो। युद्ध नीति में यह ठीक भी नहीं है किसी दुश्मन के भाई को अपनाया जाए, चाहे उसे स्वीकार किया जाए। सबसे पूछा, हनुमान जी महाराज चुप थे। हनुमान जी महाराज जानते हैं कि प्रभु सर्वसमर्थवान हैं। मैं इन्हें बताऊं कि विभीषण जी के घर में राम नाम अंकित, गृह शोभा भरने न जाए, उनके घर में राम नाम अंकित है। तो कहीं ना कहीं अपने सब जानने वाले परमात्मा के प्रति हमारा शंका का भाव होगा, इसलिए हनुमान जी सब जानकर के भी चुप हैं। जब सब लोगों ने सब कुछ कहा, मत अपना, ये भेद लेने आया होगा, तो प्रभु मुस्कुराने लगे और प्रभु ने बात कही कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कोटि विप्र बद लागहि जाऊं, आयो शरण तजे नहीं ताऊं। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो, कहा गया है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सिवरी के घर जाते, सूर श्याम का बाँह पकड़कर साग विदुर घर खाते, इस पर तुमने नहीं बिचारा कैसे आएंगे प्रभु राम। तो प्रभु कहते हैं कि बाह्य रूप से यह तो एक असुर का भ्राता है, रावण का भाई है, लेकिन इसका अंतःकरण पवित्र है और निर्मल मन से मेरे शरण को ग्रहण करने वाला, चाहे वह मेरे पत्नी के हरण करने वाले रावण का भाई क्यों ना हो, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। कोटि विप्र बद लागे जाऊं, एक दो नहीं करोड़ों विप्रों के वध लगने का पाप हमें लगेगा कि कोई सच्ची मन से शरणागति ग्रहण किया हो फिर भी उसे मैं स्वीकार न करूं। इस कथा का मात्र आशय यह है कि जिस शरण में आप बैठे हो, राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि शरणागति पवित्र अगर है तो मुझे लगता है प्रभु की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। हमारी शरणागति पवित्र है कि नहीं है, हम अंतर मन से क्या उस भाव से प्रभु के पास पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, क्या अंतर मन की पवित्रता से पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। बार बार जब प्रभु की शरणागति प्राप्त हो तो यह चिंतन विभीषण जी का करिए कि उनका अंतर मन पवित्र है तो एक राक्षस के भ्राता होने के बाद भी भगवान ने उन्हें अपना बना लिया, और अंतःकरण अगर पवित्र नहीं है तो बाह्य रूप से कितना भी अगरबत्ती, कपूर, धूप, दीप हम जला लें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी हैं। गोपिकाएं कहती हैं श्रीमद् भागवत में, अंतरात्मदृक् अखल देहि नाम अंतरात्मदृक्, आप अंदर भी विराजमान हो, बाह्य रूप से बाहर भी विराजमान हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म हो। जो परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है और बाहर भी विराजमान है, उस प्रभु को बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत अच्छा भोग लगाता हूँ, मैं बहुत विधियों से आपकी पूजा करता हूँ, वह परमात्मा तो केवल आपके अंतर्मन के पवित्रता से ही रिझने वाला है। तो उस पवित्र अंतर्मन के साथ शरणागति ग्रहण कीजिए। तो जैसे प्रभु ने विभीषण जी को अपना बना लिया, वैसे ही हम सबको भी अपना बना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे।
0: ये था आज का चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रादेशिक लोकगीत। रात्रि 8 बजे होगा हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा भारतीय परंपरा के संवाहक। वार्ताकार होंगे निवास मिश्रा।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 9:50 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज। यही कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 12:55 पर। कलाकार होंगे पंकज उदास और सुगम संगीत का ही कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर होगा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी आप सुन सकेंगे प्रातः 7:31 पर, प्रातः 8:45 पर हिट सुपर हिट फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। प्रातः 10:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्रीराम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्रीराम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो। जो मन, वचन, कर्म से श्रीराम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय पाठ मानस गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
3: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वच्छ भारत अभियानं 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूतसंरचनानिर्माणमतिक्रम्य नियमितनिरीक्षणेन नागरिकसहभागितया अथ विभिन्नहितधारकाणां समन्वयेन मापनयोग्यपरिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् एकपञ्चाशत्तमे प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्टप्रसंस्करणसंयन्त्राणि सहैव गोबर्धनसंयन्त्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्टप्रबन्धनसम्बद्धानाम् आधारभूतपरियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटिरूप्यकाणां 7 महत्वपूर्णपरियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युद्व्ययं न्यूनीकर्तुम्, ऊर्जासुरक्षां वर्धयितुं, गृहसामुदायिकस्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15 राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य 3 राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारणसेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां। IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
5: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्ट्रीट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
4: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
3: हैं? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इलीगल कंस्ट्रक्शंस विद इन 15 किलोमीटर्स ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर्स एंड डिमोलिश ऑल सच स्ट्रक्चर्स दैट हैव कम अप ओवर द इयर्स. चेयरिंग अ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इन बीकानेर, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision taken at its first cabinet meeting on May the 11th to transfer 600 acres

0: अभी आप मिली जुली आवाजों में सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा

0: है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
5: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वो भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कल से लू से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: वहीं पूर्वी यूपी में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। श्री योगी ने आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रदेश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्यौहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बांदा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने के लिए सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा एसआईआर आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

0: फिल्म परिचय से ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और

0: प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हेमंत कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म 16वां साल से। आर डी बर्मन का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी ने इसके बोल लिखे थे। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
7: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
5: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
8: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
9: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म ग्राम

0: पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के सात अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले दो दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफटॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहाँ हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निज़ाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को यह हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वज़ारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वो जराइम और मनुष्यात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा न हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदाम के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को

0: आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

तेरे मेरे सपने से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन और साधना सरगम की आवाजें हैं। संगीत दिया है विजू सा ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेजर साहब से। गौरव रोशन के गीत हैं आनंद राज आनंद के गीत हैं और इसका संगीत दिया है गौरव रोशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म वास्तव से। संगीत जतिन ललित के हैं, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। आवाजें हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की।

नदीम श्रवण के संगीत को आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी से। आवाजें हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में संगीत नदीम श्रवण के थे और गीत के बोल लिखे थे फैज़ अनवर ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: प्रदेश सरकार द्वारा गांव के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा के बाद बागपत में भी उत्साह का माहौल है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में प्रत्येक विकास खंड से चयनित एक एक अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए कहा कि गांव के बच्चों को नई दिशा देने में अनुदेशकों की बड़ी भूमिका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा वातावरण मिले, इसके लिए अब मानदेय बढ़ने से अनुदेशकों का मनोबल और मजबूत होगा, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के वातावरण पर दिखाई देगा। छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षक और अनुदेशक दोनों अहम कड़ी हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में सीडीओ अनिल कुमार ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीडीओ ने कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की पहचान कर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य जिले में उपलब्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं ज्ञानवर्धक पांडुलिपियों का संरक्षण, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण करना है। फेम इंडिया द्वारा जारी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2026 सर्वेक्षण की प्रारंभिक सूची में देश के 100 उत्कृष्ट जिलाधिकारियों को स्थान दिया गया है। बागपत जनपद के जिलाधिकारी अस्मिता लाल का नाम भी इस सूची में शामिल हुआ है। यह सम्मान उन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास, सुशासन, नवाचार एवं जनहित कार्यों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में जनपद में विभिन्न विकासात्मक, नवाचार एवं जन कल्याणकारी पहले प्रभारी रूप से संचालित की जा रही हैं। बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए विद्यालयों में कूल रूफिंग पहल लागू किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को गर्मी से राहत प्रदान कराना, सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संस्थागत क्षमता विकसित करना है। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यालय परिसरों में तापीय आराम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस पहल के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की कंक्रीट छतों पर सफेद प्रावर्तक कोटिंग, विद्यालय परिसरों में ग्रीन शेड एवं बांस आधारित संरचनाएं, कक्षाओं के आसपास वृक्षारोपण तथा रूफ टॉप सोलर के साथ कूल रूफ तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना में विशेष प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाएगी, जिससे छोटे बच्चों को भीषण गर्मी तथा हीट वेव के प्रभाव से बेहतर सुरक्षा मिल सके। जनपद में लोक निर्माण विभाग ने छोटी बड़ी सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लगभग 677 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है, जिसे स्वीकृति के लिए जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। विधायकों, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़कों तथा पुलों के निर्माण की यह कार्य योजना तैयार की गई है। इन सड़कों के बनने से लाखों लोगों को गड्ढों से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सड़कों के निर्माण, मरम्मत तथा पुलों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की है। छोटी बड़ी 253 सड़कों का 564 किलोमीटर निर्माण एवं मरम्मत कार्य होगा। इनमें 138 सड़कों का नव निर्माण होगा तथा बाकी की मरम्मत होगी। इनके अलावा 12 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। बागपत सहकारी चीनी मिल का 66 साल बाद विस्तारीकरण होने जा रहा है। इसके लिए निविदा मांगी गई है। 3,72,49,00,000 रुपए के बजट का प्रस्ताव सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है। विस्तारीकरण के बाद चीनी मिल की पेराई क्षमता 25 से बढ़कर 50,000 कुंतल प्रतिदिन हो जाएगी। इससे 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा।
0: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का।
2: फतेहपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद मैदान में उतर कर बीते दिनों अभियान की शुरुआत की। एराया ब्लॉक

0: के सिमोरी गांव में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फावड़ा उछलाकर तालाब खुदाई का शुभारंभ किया और लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और जनपद के कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद फतेहपुर में एक नई पहल शुरू की गई है जिसको मिशन 300 नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा और तालाब का एक नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकांक्षा रहती है कि ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त हो और उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल हो। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जल संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। पौराणिक काल में तालाब जल संचयन का काम करते थे, उसमें यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डेवलपमेंट और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि बारिश के पहले प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए सीमांकन कर खुदाई करवाएंगे।
1: आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगे।
0: फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा एक महीने में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि पुलिस इन अपराधियों पर निगरानी रखे। इसके साथ ही 6 अभियोग गैंगस्टर के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें 24 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था।
2: पिछले एक माह में अपराध में रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई काफी कुछ कार्रवाई किए हैं, जिसमें से हमने करीब 15 ऐसे अभ्यस्त अपराधियों से जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। इसके साथ साथ अन्य बड़े बड़े वर्कआउट भी हुए हैं इस समय, और विशेषकर जो महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग किया करते थे या बाकी अन्य चोरियों के जो हमारे नकबजन काफी समय से नकबजनी कर रहे थे शहर के अन्य क्षेत्रों में या तहसीलों में, उन पर भी हमने कार्रवाई करी और इसी तरह से फतेहपुर पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रही।
0: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले की पूरी एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट को लाइन हाजिर कर दिया है। एक ही आदेश में 15 पुलिस कर्मियों पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार एसओजी और इंटेलिजेंस विंग में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी स्तर के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान कार्यस्थल से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित टीम की ओर से लगातार कोई प्रभावी इनपुट नहीं दिया जा रहा था, जिससे अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र प्रभावित हो रहा था। फतेहपुर जनपद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य स्व निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत खागा स्थित रानी चंद प्रभा महाविद्यालय के प्रांगण में बीते दिनों सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंडल के 4 जनपदों में से 184 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लाभार्थियों के विवाह उनके परंपराओं एवं रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 85,000 की सहायता राशि पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। फतेहपुर जनपद की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात तहसील कार्यालय खागा का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील के बड़े बकायेदारों की फाइलों का निस्तारण एवं रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी से कहा कि समय समय पर नियमित तहसील के सभी पटलों का निरीक्षण करें। तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वादों की फाइलों को देखा और कहा कि धारा 67 के जो भी पुराने वाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारण कराएं एवं अन्य वादों का निस्तारण भी साथ समय कराएं। तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के रखरखाव एवं साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देश का अंक।

देश के शत शत तेरा अभिनंदन ओ मंगलमय पर्व देश के

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब उर्दू कार्यक्रम होंगे लखनऊ का।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम।

0: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाए।
1: सामीन, भारत हमारा मुल्क है जो रंग बिरंगी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है, जिसमें किस्म हा किस्म और भांत भांत के अफराद अपने मजहबों, इलाकों और मसलकों के मुताबिक रहते और जिंदगी बसर करते हैं, तो वहीं हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में आबाद मुख्तलिफ कौमों के अकायद व ख्यालात, कौमी अकदार व रिवायात में खासा तनव्वो है। हर एक कौम दूसरी कौम के त्योहार, रस्म व रिवाज की कदरदां है, इसके अजमत व तकद्दस की कायल है, बल्कि बसा औकात इस गंगा जमनी तहजीब के नुमाइंदे एक दूसरे की इबादत गाहों और उनके मजहबी जश्न व त्योहार में शिरकत करते नजर आते हैं। गोया होली दिवाली मखसूस हिंदुआना त्योहार होने के बावजूद बाज मुसलमानों की दिलचस्पी का मजहर, तो दूसरी तरफ शब बरात व मुहर्रम, ईद व बकराईद में हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के बराबर के शरीक हैं। इसी बाहमी इश्तराक ने दर हकीकत हिंदुस्तान के बाशिंदों में उल्फत व मोहब्बत, अख़ुवत व भाईचारगी की फिजा पैदा की है। इसी के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक मकाले का, मौजू है ईद उल अज़हा। मकाला निगार हैं जनाब सैयद मोहम्मद उमैर। बिला शुबा ईद उल अज़हा एक मुस्लिम त्यौहार है जिसमें कुर्बानी पेश की जाती है। कुर्बानी क्या है? अपनी महबूब तरीन चीज को रजाए खुदावंदी के लिए कुर्बान कर देने का नाम कुर्बानी है, जो दरअसल सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत और एक अजीम कुर्बानी की यादगार है। इस कुर्बानी के पीछे एक पूरा इतिहास छुपा हुआ है। इसको जिक्र किए बगैर बकराईद यानी ईद उल अज़हा का हक अदा नहीं हो सकता। दोस्तों, दिन बहुत सारे बीत गए तो क्या हुआ, इतिहास का हाफजा तो तरोताजा है, यानी आज से तकरीबन 4185 साल पहले की बात है। हमारे देश हिंदुस्तान से बहुत दूर पश्चिम की ओर एक मुल्क इराक नामी है, जिसको किसी जमाने में कुल्दानिया कहते थे। वहाँ एक शरीफ और ऊंचे घराने में एक बुजुर्ग पैदा हुए। उनकी कौम की जबान में उनका नाम अब्राहम था और हमारी और आपकी बोलचाल में उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उनका मुल्क तहजीब और तमद्दुन की तरक्कियों में गुले गुलजार बना हुआ था, लेकिन रूहानियत की आंखें बंद थीं। ऐसे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से पैगंबरी का मनसब अता हुआ और तौहीद की मुनादी का हुक्म मिला। मनसबे पैगंबरी अता होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत से इम्तिहानात और आजमाइशों से गुजरना पड़ा, जिनमें वो कामयाब हुए। तौहीद की आवाज बुलंद करने की सजा में नमरूद नामी बादशाह ने आपको आग में दलवा दिया। नतीजा ये हुआ कि आग गुले गुलजार बन गई। इस वाकये के बाद जब लोगों ने खुदा के पैगाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए, तो वो अपनी बीवी हजरत सारा और अपने भांजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा शाम आकर आबाद हो गए। वहाँ हजरत सारा ने औलाद से मायूस होकर अपनी बांधी हजरत हाजरा से आपकी शादी करा दी। चुनांचे हजरत हाजरा के बतन से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई, बहुत अच्छे से पले बढ़े और फिर कुछ बड़े हो गए तो बाप के साथ हाथ बटाने लगे, माँ बाप का काम करने और सहारा बनने लगे, क्योंकि तकरीबन 87-88 साल की उम्र में बड़ी दुआओं और तमन्नाओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेटा अता फरमाया था, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 13 बरस ही की थी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं के ऊपर यानी गैब से ये हुक्म मिल रहा है कि अपनी अजीज तरीन शे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे खूब गौर खोज करने के बाद जो मालूम हुआ तो वो ये कि दुनियावी सामान में अजीज तरीन शे उन्हें अपने एक लौते बेटे की जात नजर आई। इशारे खफी को हुक्म इलाही के दर्जे पर लाकर फौरन फैसला कर बैठे कि छुरी अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ही चलाना है। फिर ख्याल आया कि इस इरादे को खुद इस मासूम से भी पूछ लें। बेटा खुद एक नबी, नबी का बेटा और खातमुन नबीयीन मोहम्मद

0: आपकी।
1: सामीन, अभी आप जनाब मोहम्मद इरफान लखनवी से उनका उम्दा कलाम समात फरमा रहे थे। और अब अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है।

0: अभी आप सुन
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और 100 और FM के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिन्हें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

फिल्म महबूब की मेहंदी से ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पवित्र पापी से। गीत और संगीत दिया है प्रेम धवन ने, आवाज किशोर कुमार की है।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मनहर उदास के आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से। गीत संतोष आनंद के हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से। संगीत आर डी बर्मन के, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और आवाज किशोर कुमार की है।

0: सुनो ना,
1: बोलो ना।
0: अपने घर को छोड़ के जाऊं इतनी मैं ना

फिल्म बनारसी बाबू से ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।

फिल्म तेरे मेरे सपने से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ को आप फिर से सुन रहे हैं। संगीत सचिन देव बर्मन के हैं और गीत के बोल लिखे हैं नीरज।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फोर्स से। कार्तिक और जयश्री की आवाजें हैं, हरीश जयराज के का संगीत है और गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं।

फिल्म तानाजी से ये गीत आप सुन रहे थे हर्षदीप कौर की आवाज़ में। गीत अनिल वर्मा ने लिखे थे और संगीत दिया था सचेत परंपरा ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

फिल्म गद्दार से ये गीत आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नदीम श्रवण का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे समीर ने।

फिल्म कहो ना प्यार है से ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, संगीत राजेश रोशन का है, गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क और सावन कुमार ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाते गुनगुनाते यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से।

0: करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं के लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर की कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जिरवा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भिमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर, रियाद सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब से कुछ पलों में।
4: पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
5: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
4: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
5: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम शब्द यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ एक देवी गीत से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में समय आप सुन रहे हैं राम शब्द यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं एक विरह गीत।

राम शब्द यादव और साथियों के गाए इस निर्गुण के साथी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब से कुछ पलों में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी @90 90 साल किया।

आज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीतांजलि का आरंभ हम कर रहे हैं बागी 3 के इस गीत से, जिसे गुरुप्रीत सैनी ने लिखा और इनके लेखन में इनका सहयोग किया गौतम जी शर्मा ने। धुन रोचक कोहली ने बनाई और आवाजें रोचक और शान की। क्या खास गीत है वो यार, अब मेरे लंबा सफ़र है, हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा। पैरों में तेरे काटा चुभे तो दर्द ये बांटे बट जाएगा, ये सुनते हैं यह खास गीत।

अभी आप सुन रहे थे बागी 3 मूवी का ये खास गीत। और अब अगला गीत हम आपको बेहद ही प्यारा गीत छिछोरे फिल्म का सुनवा रहे हैं, कल की ही बात है।

छिछोरे मूवी का ये गीत सुन रहे थे आप। कार्यक्रम में आगे हम सुनवा रहे हैं आपको द बॉडी मूवी का गीत।

द बॉडी मूवी का ये गीत सुन रहे थे आप। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं बागी फिल्म का ये गीत।

जॉली एलएलबी इस मूवी के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी।

0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था, लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ

0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आओ खाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
5: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब से कुछ पलों में।

सुधो फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने सुहाने का आरंभ हम कर रहे हैं। अनामिका फिल्म के इस बहुचर्चित गीत से

इस गीत को अनामिका फिल्म के लिए आवाज़ दिया था किशोर कुमार ने। किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको अनुरोध फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं, तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोजे न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था, जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे आप, फिल्म थी भीगी रात। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 9 तो 11 का ये गीत।

पेइंग गेस्ट फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत अब से कुछ पलों में।

0: ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पंकज उदास।

0: पंकज उदास को सुन रहे थे आप। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले को मोसर तरीके से नाफिज करने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर तक महदूद न रहे बल्कि मामूल के मुताबिक निगरानी, आवामी शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकों के कोऑर्डिनेशन से ठोस नतायज यकीनी किए जाएं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं पेशरफत मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने रियासतों से कचरा प्रोसेसिंग और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मीटिंग में रेलवे, बिजली और सड़क हलकों के तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले 7 खसूसी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: काबीना की इक्तिसादी मामलों की कमेटी ने अवामी तकसीम निज़ाम के तहत राशन, नकलो हमल और मैनेजमेंट इमदादी स्कीम सार्थक पीडीएस को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 25,530 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बातचीत में वजीर बराए इत्तला तो नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा

0: कहा कि यह स्कीम अवामी तकसीम निजाम को जदीद बनाने में तावुन करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वज़ीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गीडा हल्के में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निज़ाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वज़ीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। ईद उल अज़हा का त्यौहार आज पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम के जरिए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खसूसी नमाज का एहतमाम किया गया, जिसके बाद कुर्बानी के फ़राइज़ अदा किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज़ह रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू न हो और न ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से लू से राहत का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के कई हिस्सों में कल से आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, जालाबारी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दरियस्ता मशरकी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। कुछ मकामात पर जालाबारी के भी इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है आज का उर्दू प्रोग्राम।
3: उर्दू प्रोग्राम के सामेन की खिदमत में शफकत अली खान का सलाम कबूल हो। सामाइन, आज पूरे मुल्क में बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। खुशियों के इस मौके पर हम तमाम सामाइन को आकाशवाणी परिवार की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सामईन, ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाया जाता है, जब हाजी लोग अपना हज मुकम्मल कर लेते हैं। इसे ईद कुर्बा में कहते हैं। कुर्बानी के त्यौहार से हमें नसीहत मिलती है कि जब ज़रूरत हो तो अपनी सबसे महबूब चीज़ भी कुर्बान कर दे। कुर्बानी का यह जज्बा होता है कि हम अपने आस पास के लोगों, शहर और मुल्क के लोगों के दरमियान अपने नफ्स को कुर्बान कर दें। इसी पैगाम को आम करने के लिए जब हम अपनी कीमती चीज़ें दूसरों के राहों में बिछा देते हैं तो जाहिर है कि सामने वाला भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा, और आज के वक्त की यही ज़रूरत है, मोहब्बत के इस पैगाम को दूसरों तक आम करें। त्यौहार किसी भी कौम की सकाफती और मजहबी तशख़्स का आइनेदार हुआ करती हैं। ये कौमी यकजहती और माशरती इकदार को फ़रोग़ देने के लिए नहायत अहम है। हिंदुस्तान की कसीरतुल सकाफती आबादी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से कौमी त्यौहारों मुख्तलिफ सकाफती और समाजी इकदामात को बहुत अहमियत दी जाती है।

0: अभियान चलाया जाता है। लोकल फॉर वोकल, त्योहारों की खरीदारी के मौके पर मुल्क के मसनूआत और दस्तकारों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमती सतह पर एक खसूसी इकदाम लोकल फॉर वोकल चलाया जाता है। त्योहारों के जरिए तहजीबी रवायात बरकरार रहती है और कौमी इकदामात मुल्क की माशी और समाजी तरक्की में मुआवन साबित होता है। सामईन, अभी आप ये तकरीर समाअत फरमा रहे थे। मौजू था कौमी यकजहती में त्योहारों की अहमियत और मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम की भलाई के लिए चलाई जाने वाली मुतअद्दिद स्कीमें। सामईन, अब हम आपको नात पाक की जानिब ले चलते हैं। समाअत फरमाइए जनाब मोहम्मद उस्मान से उनकी नात पाक।
1: नात पाक के दो शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं।

भाई मुसीबत तो उस वक्त आती है जब सारा लिखने पढ़ने का काम हमारे सर डाल दिया जाता है। अब जितना रजिस्टर तैयार करना है और जो कुछ लिखने पढ़ने का काम होता है वो हम करते हैं, और साहब बहादुर लोग बस कंप्यूटर पर बैठकर खट खट खट खट करते रहते हैं। मंगू दादा अपनी आदत के मुताबिक उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, तभी उनके कानों में आवाज़ आई, क्या मियाँ घोड़े को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? बिल्कुल अपने जैसा मरियल बना रखा है। रास्ता 15 मिनट का है और 10 मिनट चलते हुए हो गए, लेकिन अभी तक निस्फ मुसाफत भी नहीं तय कर पाए। ज़रा दो चार चाबुक रसीद करो। मंगू दादा ने मुजमहिल आवाज़ में खांसते हुए जवाब दिया, साहब घोड़ा कहाँ से अपनी फितरत के मुताबिक चल पाएगा? बेचारा हमारे साथ फाका कशी करके ज़िंदगी गुजार रहा है। चना तो दूर, इसे चने की महक भी महीनों नसीब नहीं होती। घर का बचा खुचा खा लेता है, जब तक है तब तक सहारा है, वरना राम जाने क्या होगा। दोनों मंगू दादा की बातें सुन रहे थे, उनमें से एक ने कहा, मियाँ फिक्र मत करो, सरकार ने तुम्हारा और तुम जैसे लोगों का बंदोबस्त कर दिया है। लगता है तुम्हें मालूम नहीं कि हुकूमत अब इतनी सस्ती कीमतों पर अनाज गल्ला मुहैया करा रही है जिससे अब हमारे मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें इतना गल्ला मिलेगा कि तुम्हारे घोड़े का भी इंतजाम हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मंगू दादा को लगा कि वो शख्स उससे मजाक कर रहा है। वो मुस्कुरा कर एक बार फिर से सामने की तरफ मुतवज्जा हो गए, लेकिन वो शख्स लगता था कि मौजूदा हुकूमत का ज़बरदस्त हिमायती है। मंगू दादा को मुखातब करके बोला, मियाँ तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं क्या? यकीन करो, हुकूमत अब गरीब मजदूर और फाका कश तबके को 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो आटा और 2 रुपये किलो दाल मुहैया करा रही है। जाकर अपने राशन की दुकान पर मालूम कर लेना। मंगू दादा की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उनका दिल उसी रफ्तार से धड़कने लगा जिस रफ्तार से तांगा चल रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने कोई ऐसा ख्वाब देख लिया जिसकी ताबीर आंखों के सामने हो। लेकिन मंगू दादा वक्त के थपेड़ों से इतना तो सीख ही चुके थे कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। माजी के वाकयात भला कहाँ भुलाए जाते। सामने की तरफ मुसलसल नजरें गड़ाए और लगाम को मजीद ढीला छोड़ते हुए मंगू दादा ने कहा, साहब अगर ऐसा हो गया होता और इतनी सस्ती कीमतों में अनाज गल्ला मिल रहा होता तो हम जैसे लोग आए दिन सरकार को क्यों कोसते रहते? उनकी बातों में मुदाखलत करते हुए दूसरा आदमी भी बोल पड़ा, अरे मियाँ उनकी बातों में मत आना, ये तो बस इन लोगों के सियासी हथकंडे हैं। सिर्फ तुम्हारा वोट लेने के लिए ये हुकूमत ऐसी ऐसी चालें चल रही है। अरे ये क्या खाक गरीबों का ख्याल रखेंगे? आने दो हमारी हुकूमत, फिर देखना गरीबों का मसीहा कैसे इनका ख्याल रखेगा और हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। उसकी बातें सुनकर पहला शख्स तैश में आ गया और बोला, अम्मा मियाँ सपने देखना छोड़ दो। दोनों की बातों से मंगू दादा ने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि उनमें से एक मौजूदा हुकूमत का हिमायती है और दूसरा मुखालिफ। लेकिन उनके बहस मुबाहसे से कुछ भी हो, उनके कानों में तो उस पहले शख्स की बातें गूंज रही थीं, 1 रुपया किलो चावल, 2 रुपये किलो आटा और 2 रुपये किलो दाल। क्या ये मुमकिन है? क्या उस आदमी की बातों में ज़रा भी सच्चाई है? मंगू दादा ये बातें सोच ही रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई रोको, कहाँ तक लिए जाओगे, हमारी मंजिल आ गई। मंगू दादा ने फौरन लगाम खींच ली, हिनहिनाकर घोड़ा एक झटके के साथ खड़ा हो गया। रात भर मंगू दादा करवटें बदलते रहे, उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्या सचमुच कल से वो और उनकी बुढ़िया पेट भरकर खाना खा सकेंगे? क्या वाकई ऐसे दिन भी आ सकते हैं कि जब समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा? उसी उधेड़ बुन में कब मंगू दादा की आंखें लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही मंगू दादा ने अपना जेब टटोला, जेब में वही 20 रुपये मौजूद थे जो कल उन्होंने कमाया था। बीवी की तरफ देखते हुए बोले, देखो ये 10 रुपया लो और दाल का मसाला और दूसरी चीज़ें ले आना, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ चावल और दाल लेने। आज तुम चावल और दाल पकाना, और हाँ बाजार से थोड़ी हरी धनिया और हरी मिर्च भी ले लेना, चावल दाल के साथ हरी धनिए की चटनी होगी तो अच्छा लगेगा। शौहर की बातें सुनकर बीवी ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, क्या बात है जी, लगता है कल ज़्यादा ही कमाई हो गई थी। अरे नहीं पगली, अब देखना हम भी अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। इतना कहकर मंगू दादा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए शहर की सरकारी राशन की दुकान की तरफ चल दिए। ये वही राशन की दुकान थी जिसके पास से गुजरते हुए आमतौर पर मंगू दादा के मन में ये ख्याल आया करता था कि कब वो दिन आएगा जब वो भी उस दुकान से एक आध बोरी अनाज खरीद कर ले जाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने ये बातें सुन रखी थी कि शहर के लाला राम की राशन की दुकान सरकारी है और वहाँ पर गरीबों को निस्बतन सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है,
लेकिन वो लाला राम की घनी मूंछ और मजबूत बाजुओं को देखकर कभी वहां

0: जाने की हिम्मत न कर सके। आज उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो वहां जाएंगे और अनाज लेकर आएंगे। दुकान के सामने वाले चौराहे पर जब मंगू दादा पहुंचे तो देखा कि दुकान पर बड़ा सा ट्रक खड़ा है। मंगू दादा ने सोचा शायद सरकारी अनाज की बोरियां उतर रही हैं, क्योंकि शहर इतना बड़ा है और आवाम इतनी भूखी है कि यहां तो ट्रकों के ट्रक अनाज भी उतरे तो कम पड़ जाए। मंगू दादा जब दुकान के करीब पहुंचे तो देखा कि ट्रक के पास वीर सिंह जी कुर्सी लगाए बैठे हैं और अनाज की बोरियां उतरने के बजाय दुकान से निकाल निकाल कर ट्रक पर चढ़ाई जा रही हैं। वीर सिंह जी उस शहर के मालदार लोगों में से थे जिनके मुतअद्दिद होटल शहर में चल रहे थे। दुकान पर पहुंचकर मंगू दादा ने एक मजदूर से पूछा, क्यों भाई अनाज मिलेगा? मजदूर ने जवाब दिया, क्यों नहीं मियाँ, कितना चाहिए? हाँ, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो आटा चाहिए था बाबूजी। मजदूर अंदर जाकर तीनों चीज़ें तोल कर ले आया। मंगू दादा ने जेब से 5 रुपये निकालकर मजदूर के सामने रख दिया। मजदूर हैरत से मंगू दादा को देखते हुए बोला, बड़े मियाँ ये क्या है, बाकी के रुपए कहाँ हैं? अनाज की थैलियाँ उठाते हुए मंगू दादा ने जवाब दिया, बाकी के रुपए मतलब 5 ही रुपये तो हुए, 2 रुपये दाल, 1 रुपये चावल और 2 रुपये आटा के। ये सुनकर मजदूर कहकहा लगाने लगा और हंसते हुए तंजिया लहजे में कहना शुरू किया, मियाँ सन 47 में जी रहे हैं क्या? कुल 35 रुपये हुए हैं, हैं तो निकालो, नहीं तो अनाज नीचे रखो और निकलो यहाँ से। अरे भाई ऐसे कैसे चले जाएंगे, सरकार हमें सस्ती कीमत पर अनाज दे रही है, हम वही लेने आए हैं। मंगू दादा की बातें सुनकर वफादार मजदूर भी तेश में आ गया और मालिक को आवाज़ देते हुए मंगू दादा पर चिल्लाया, मियाँ सरकार को जो खैरात तकसीम करनी थी वो हम बांट चुके, अब चलो यहाँ से, नहीं तो इस उम्र में हड्डियाँ टूटती हैं तो दोबारा जुड़ती नहीं हैं। मजदूर की बातें सुनकर उस्ताद मंगू के हाथों से अनाज की थैलियाँ छूटकर ज़मीन पर गिर गईं और डबडबाई आंखों के साथ वापस हो गए। वीर सिंह उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके उभरे हुए पेट को देखकर मंगू दादा को ऐसा लगा कि अगर वो थोड़ी देर और ठहरे तो उसमें वो भी समा जाएंगे।
1: सामईन, अभी आप डॉक्टर अलीमुल्लाह से उनका अफसाना समात फरमा रहे थे, मंगू दादा। सामईन, अब हम आपको प्रोग्राम के आखिरी में ले चलते हैं गज़ल की जानिब। समात फरमाइए अनुप जलोटा से, उनकी आवाज़ में यह खूबसूरत गज़ल।

0: ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं धान की नर्सरी हेतु खेत की तैयारी विषय पर डॉक्टर एस के तोमर और विनय कुमार की भेंट वार्ता।
1: प्रमुख फसल है और अपने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा रकबा में इसकी खेती की जाती है। ढेर सारे किसान भाई ऐसे हैं जो नर्सरी तो डालते हैं लेकिन उनके मन मुताबिक पौध नहीं तैयार हो पाते हैं। कभी घना हो जाएगा, कभी दूर हो जाएगा, कभी कभी इतना खरपतवार उग जाएंगे कि नर्सरी से पौध निकालना मुश्किल हो जाता है। इन सारी समस्याओं से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हम से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस के तोमर जी। आप हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार जनपद गोरखपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं प्रभारी अधिकारी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, धान की उचित नर्सरी बनाने की विधि क्या है और उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए?
2: धान की जो नर्सरी है, जितनी अच्छी आप नर्सरी करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी। और धान की अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए

0: सबसे पहले जहां पर आप नर्सरी डालनी है उस क्षेत्र का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर बहुत पानी न लगता हो, जहां पर आपके पास सिंचाई का साधन भी अवश्य होना चाहिए, खेत की मिट्टी भी भुरभुरी और दोमट मिट्टी हो तो सबसे अच्छी है, और उसको खरपतवार रहित करके अच्छी तरह जुताई करके आपको उस क्षेत्र को तैयार कर लेना है। नर्सरी डालने का जो स्थान है, अगर संभव है किसान भाई, 4 से 6 इंच उठी हुई नर्सरी बेड बना करके आप उस पे नर्सरी डालें, और उसमें बेड की जो जगह है उसमें गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
1: जो नर्सरी बनावल जाई ओकरी
0: जी
1: पहले खेत का तैयारी कैसे कईल जा कि ओमे खर पतवार और जीवाणु यही तरह से कीड़ा मकोड़ा।
0: धूप लगने से जितने भी उसमें हानिकारक जीवाणु या आपके बीमारी के स्पोर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, नर्सरी डालने के स्थान को सोलर सोलराइजेशन भी करते हैं, जैसे काली जो पॉलिथीन शीट आती है उससे ढक देते हैं, और करीब करीब 45 दिन का ये प्रोसेस होता है। तो इससे सूरज की गर्मी उस पॉलिथीन शीट के अंदर जा करके मिट्टी में होने की, तो इस तरह से ये रोग रहित और खरपतवार रहित आपकी जमीन हो जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर हमारे किसान भाई सब नहीं कर पाते, उनके लिए बेहतर यही है कि आप गहरी जुताई करके उसको 2-3 बार, एक बार आप गहरी जुताई करते हैं, 2-3 बार उसमें जो है कल्टीवेटर चला करके और महीन करके छोड़ दें, तो उससे खरपतवारों का जमाव जो है काफी हद तक रुक जाता है और जो हमारे हानिकारक जीवाणु वो भी नष्ट हो जाते
1: माटी के अंदर जौन कीड़ा मकोड़ा पावल जाला
0: जी।
1: का ओकर भी उपचार यही समय कर लेवे के चाहिए।
0: नहीं, अगर आपके खेत में कुछ इस तरह की विशेष दिक्कत है, जब आप गर्मी में छोड़ देते हैं खुला तो तब तो कोई उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें है तो उसके लिए तो उपचार करने के लिए है कि आप जब उसमें पानी भरेंगे उसमें, उस समय आप ज्यादातर दीमक का ही या जो आपका रूट बोरर है उनकी समस्याएं आती हैं, और तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, तो उसके लिए क्लोरोपायरीफास का आप इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं।
1: कोनो भी प्रजातियों के चाहे मोट धान वाली या पातर धान वाली ओकर बेहन कितना कितना दूरी पर डाले के चाही, आकार नर्सरी डालत समय भी खाद का प्रयोग खेत में करे के चाही या सीधे नर्सरी डाल देवे के चाही।
0: देखिए, जो लाइन की बात आपने किया है, जनरली हमारे जो किसान भाई हैं वो नर्सरी छिटकवा ही डालते हैं,
1: हाँ
0: मेंटेन लाइन से लाइन की दूरी में वो मेंटेन नहीं कर पाते। फिर भी अगर आप किसान भाई करते हैं तो 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में भी किसान भाई जो है धान की बेरन डाल सकते हैं। साथ ही आपने दूसरा प्रश्न किया है कि खाद की मात्रा, तो किसान भाई को चाहिए कि जब भी आप नर्सरी डालते हैं तो अगर गोबर की सड़ी खाद का उसमें प्रयोग करते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम मात्रा में करके भी काम चलाया जा सकता है, और इसके लिए किसान भाई जो है 50 किलोग्राम नत्रजन और 25 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर की दर से जो नर्सरी तैयार करते हैं उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी नर्सरी का जमाव हो जाता है उसके बाद उसमें कुछ क्षेत्रों में जहां पर हल्की मिट्टी है या रेतली मिट्टी है या बलुई मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वहां पर अक्सर देखा जा रहा है कि आयरन की कमी होती है, यानी कि लोहे लोह तत्व की कमी होती है, तो उसके लिए फेरस सल्फेट का छिड़काव उसके बाद करने की उसमें जरूरत होती है। आवश्यकता अनुसार हम जो है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं।
1: नर्सरी में जो कीड़ा लगे या बीमारी लगे या जैसे आप बतौली हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का कमी, तो ओकरे बचाव खातिर भी का कोनो सावधानी बरते के पड़ी?
0: जैसे मैंने बताया कि कीड़े बीमारी, तो कोई नर्सरी अगर आपने खेत को अच्छी तरह तैयार करके डाला है और बीज को शोधित करके आपने डाला है, तो नर्सरी में सामान्यतः कोई कीड़ा और बीमारी का प्रकोप दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये फेरस सल्फेट उन मिट्टियों में जहां पर बलुई मिट्टी है या हल्की मिट्टी है उनमें दिखाई देता है, तो उसके लिए जो है फेरस सल्फेट का हम किसान भाई प्रयोग

0: कर सकते हैं और अब उसे जो है बचाव हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छी सी बरसात भी हो जाती है उस समय तो उससे भी फेरस सल्फेट की जो है ये लक्षण दूर हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत लोग बाना जमुना क्षेत्र में जिंक की कमी से जो रोग होला, धान का खैरा रोग,
0: जी
1: तो क्या नर्सरी में अगर जिंक सल्फेट का छिड़काव कइल जा तो उनके फसल के बचावल जा सकेला रोपाई कइला के बाद, या रोपे वाला खेत में भी डालल जरूरी होला?
0: देखिए, जिंक सल्फेट जैसी अमूमन धारणा बन गई है किसान भाइयों की, हर फसल में जिंक सल्फेट डालना है। जिंक सल्फेट अल्टरनेट पर डालना, यानी कि एक साल छोड़ के एक साल में डालना चाहिए। अगर जरूरत ना हो, जहां सिम्टम्स जिंक सल्फेट जिंक की कमी के दिखाई न दे, वहां पर एक साल छोड़ करके डालना चाहिए। जहां तक आपने बात की कि नर्सरी में डालने की बात है जिंक सल्फेट की, देखिए जिंक सल्फेट अगर आपको आपके जमीन में जिंक की कमी है या पिछले साल आपके खेत में जिंक की कमी के लक्षण आए हैं, तो निश्चित रूप से आप जिंक सल्फेट अपनी नर्सरी में डाल सकते हैं। और खड़ी फसल में भी आपका अगर इस तरह का दिखा लगता है तो यूरिया के साथ मिला करके आप जिंक सल्फेट का छिड़काव अपनी नर्सरी के ऊपर कर सकते हैं। जहां तक धान की रोपाई की बात की है आपने, उनमें जिंक सल्फेट जैसे मैंने बताया कि एक साल छोड़ करके एक साल बाद करना चाहिए, उन किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: डॉक्टर,
2: धान की नर्सरी है तो खेत की तैयारी, इस विषय पर डॉक्टर एस के तोमर से बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। खेती किसानी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 2 बजने को हैं। समाचार क्रमशः अंग्रेजी तथा हिंदी में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।

0: फेकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोक भवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ YIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अज़हा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अज़हा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अज़हा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार ही लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फ़ोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है बहुत खुशी के भाव थे। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों, उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफकोर्स मैं भी काफ़ी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और को छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक

अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा।

0: अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियाँ उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है, और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
0: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे, और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए CRPF में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है, और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला। टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है, और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है। तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो CRPF आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी CRPF के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो CRPF एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा CRPF का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी CRPF, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
0: वाह क्या बात।
1: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
0: वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
1: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
0: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें और लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: क्या बात है, 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: वाह क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एक ना बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
0: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल, वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत से आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPM ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ। जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ। तो हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीतमाला लेकर आते थे. और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतज़ार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे. क्या हाँ. गोल्डन वॉयस थी उनकी.
0: बिल्कुल.
1: तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई. और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए.
0: बिल्कुल. और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है. हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने.
0: बिल्कुल.
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी. और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल. तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की. एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूँगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है. निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर.
1: धन्यवाद. धन्यवाद. जय हिंद.
0: जय हिंद.

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: जी हाँ, अब हम भी उड़ चलते हैं। अभिषेक समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो प्रियंका अरोड़ा और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युगवाणी।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर, 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
9: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में। और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। दोस्तों, हमें समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आजकल हम मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में ध्यान ही नहीं देते कि समय कैसे रेत की तरह फिसला चला जाता है। इसलिए ध्यान में रखें कि एक बार बीता हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव आज के डिजिटल युग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय बन चुका है। आज के समय में युवा अपनी जीवन शैली का लगभग हर हिस्सा सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया ने जहां दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, वहीं इसने युवा पीढ़ी को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में गहराई से प्रभावित किया है, जिसके कारण हम इसे दोधारी तलवार भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपने विचारों, सूचनाओं, कला और संवाद को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आज का युवा अपना काफ़ी समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताता है। ये माध्यम न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये ज्ञान और वैश्विक जुड़ाव का भी एक बड़ा जरिया बन चुका है। लेकिन बिना किसी नियंत्रण और सही समझ के इसका अत्यधिक उपयोग युवाओं के भविष्य को भटका सकता है। सही तरीके से उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया युवाओं के विकास में वरदान साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया के कई मंचों से युवा मुफ्त में ट्यूटोरियल, शिक्षक सामग्री और व्यावसायिक कौशल सीख सकते हैं। इसके जरिए युवा भौगोलिक दूरियों को पार करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं को अपनी कला, संगीत, लेखन और फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने का मौका देते हैं, जिसकी मदद से आज वो घर बैठे भी कमाई कर सकते हैं। इसकी मदद से देश दुनिया की सामसायिक घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और नई तकनीकों के प्रति युवा तेजी से जागरूक हो रहे हैं। इतने फायदे होने के बावजूद सोशल मीडिया के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग ने युवाओं के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की लत के कारण युवा अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई और करियर दोनों ही प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इस बारे में हम बातें करेंगे और भी, पर चलिए उसके पहले हम सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया का युवाओं पर दुष्प्रभाव। इंटरनेट पर ट्रोलिंग, फेक न्यूज़, अश्लील सामग्री, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे युवा आसानी से भ्रमित और प्रताड़ित भी हो जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन के केवल अच्छे और दिखावटी पलों को पोस्ट करते रहते हैं। इसे देखकर दूसरे युवाओं में फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूट जाने का डर पैदा हो जाता है। वो अपने वास्तविक जीवन की तुलना दूसरों के आभासी जीवन से करने लगते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया की लत का सबसे बुरा असर युवाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। दूसरों से खुद की तुलना करने के कारण युवाओं में हीन भावना, अकेलापन, अवसाद यानी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियाँ बढ़ रही हैं। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद की कमी, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, आंखों की कमजोरी और शारीरिक सक्रियता घटने से मोटापा जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए युवाओं, उनके माता पिता और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है स्क्रीन टाइम का निर्धारण करें। युवाओं को अपने सोशल मीडिया उपयोग का समय निश्चित करना चाहिए ताकि उनकी दिनचर्या प्रभावित ना हो। स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं को इंटरनेट के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और आभासी दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को खेलों, किताबों और बाहरी शौक की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया विज्ञान का एक ऐसा अनूठा आविष्कार है जिसे पूरी तरह नकारा तो नहीं जा सकता। ये युवाओं के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, ये पूरी तरह से इसके उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है। अगर युवा इसका उपयोग अपनी प्रगति, ज्ञान और रचनात्मकता के लिए करेंगे तो ये उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। इसके विपरीत, अगर वो इसके जाल में फंसकर दिखावे की दुनिया को ही सच मान लेंगे तो ये उनके जीवन को अंधकार की ओर धकेल सकता है। इसलिए युवाओं को इसमें संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, ओरछा का किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत किला है। ये किला बुंदेला वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ओरछा शब्द का अर्थ होता है गुप्त स्थान। ये किला चारों ओर से घने जंगलों और बेतवा नदी से घिरा हुआ है, जिसने सदियों तक इसे दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखा। यहाँ के महल, मंदिर और छत्रियाँ आज भी बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। ये विशाल किला मध्य प्रदेश के झांसी शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा नामक ऐतिहासिक शहर में स्थित है। ये किला बेतवा और जामनी नदी के संगम से बने एक टापू पर स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए एक पत्थर के बहु मेहराबदार पुल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ओरछा की स्थापना और इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। बाद के राजाओं ने, विशेष रूप से राजा मधुकर शाह और राजा वीर सिंह देव ने, इस किले परिसर के भीतर कई अन्य भव्य महलों और संरचनाओं का निर्माण करवाया। ओरछा लंबे समय तक बुंदेला राजाओं की राजधानी रहा। दोस्तों, इस किले परिसर में कई ऐतिहासिक और वास्तुकला से भरपूर इमारतें हैं, जिसमें राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल का नाम आता है। राजा महल किले का सबसे पुराना हिस्सा है, जिसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह और मधुकर शाह ने करवाया था। इसके कमरों की दीवारों और छतों पर भगवान कृष्ण और धार्मिक कथाओं के बेहद खूबसूरत चित्र बने हैं। जहांगीर महल इस परिसर की सबसे भव्य इमारत है। राजा वीर सिंह देव ने अपने मित्र और मुगल सम्राट जहांगीर के केवल एक रात के रुकने के लिए इस आलिशान महल का निर्माण करवाया था। ये बुंदेला और मुगल शैली का बेजोड़ मिश्रण है। ओरछा का किला अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसमें बड़े बड़े आंगन, सुंदर छज्जे, जालियां, ऊंचे बुर्ज और नक्काशीदार गुंबद हैं। यहाँ की दीवारों पर बने भित्ति चित्र सदियों बाद भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। दोस्तों, ओरछा का किला केवल पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि ये बुंदेला राजाओं के शौर्य, कला प्रेम और धार्मिक आस्था का जीवंत दस्तावेज है। यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल ये किला आज दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका संरक्षण करना और इसकी ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: घर आंगन सुने वाली सब श्रोता बहन के नमस्ते। भैया देखो अपन बैठकी तो शुरू हो गई और अपनी बैठकी में आज बताओ कि देखो अब मौसम जो बा खराब हो रहा बाटे तो कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली चमके ले तड़के ले गिरे ले तो उसे कैसे अपन बचाव करे।
1: भैया रोज देखो मैसेज भी आवता है, अलर्ट कहल जाता है कि आंधी तेज आ सकेले, बारिश हो सकेला, मौसम बिगड़ सकेला, इस तरह के रोज संदेश देखे के मिलता। तो ऐसे लोगन में अपने सभी श्रोता भाई लोगन से ही कहेगा कि वो लोग अपन सावधानी रखें और आकाशीय बिजली से अपने बचौले के पुरहर उपाय रखें और कहीं भी प्रयास करें कि बाहर न निकलें बरसात के समय जब ऐसा संभावना हो के, और अपन मोबाइल वगैरह भी वो समय उपयोग न करें। भैया
0: बिल्कुल, अगर कोनो तरीके से अगर आप बाहर बानी अचानक से ऐसा आ गई तो आप कोनो पेड़ या बिजली के खंभा से दूर रहें। अगर खुला जगह पर बाटी तो दोनों पैरन के आपस में सटा के घुटना के बीच सिर रख के उकड़ू बैठ जाएं ताकि मनो कोनो प्रकार का खतरा ना रहे। और घरे भी रहें तो देखें आप खिड़की बंद कर दें, जैसे टीवी बा फ्रिज बा ओकर प्लग भी निकाल दें ताकि कोनो भी नुकसान न पहुँचे। अगर आप गाड़ी चलावतानी गाड़ी में होखी तो कार में अगर होखी तो गाड़ी का शीशा बंद कर दें और अंदर से बंद करके रहें। आप भरसक प्रयास करें कि ऐसा अगर मौसम रहे तो साइकिल या मोटरसाइकिल से बाहर न निकलें, काहे कि जौन बाटे बिजली आकाशीय बिजली का खतरा भी बढ़ जाला। अगर आप यात्रा करतानी और आप तालाब या पानी की जगह पर बानी तो वहाँ से भी आप अपने के बचाव करें और लोहे की रॉड जैसन चीजन से भी दूर रहें।
1: थोड़ा सा सावधानी रख के बड़ी दुर्घटना से बचल जा सकेला, जीवन अनमोल है, ओके बचावे के फर खातिर थोड़ा थोड़ा अगर सावधानी रखे के बाद तो ओके रखे के चाहिए।
0: बिल्कुल भैया, देखा तो अपनी बैठकी में और बात करे के लेकिन ओकरी पहले तनी मन मनसाइन खातिर सुनवा दिया जाए गो गीत
1: गाय गिडवानी जी।

0: हाँ देखिए अपनी बैठकी में मन मनसाइन तब भइल
1: और पद्मा
0: और
1: गिडवानी जी ई गीत सुनौलिन जैसे पुरहर मन मनसाइन भेल, एके खातिर इनके धन्यवाद दियल जा। और
0: बिल्कुल
1: अब कुछ ओखर जानकारी के बाद चाहे पोषण कुपोषण के समस्या जो आवेले परी शरीर के साथे शरीर कुपोषित हो जाला पूरक आहार न मिलने से पर्याप्त आहार न मिलने से उससे संबंधित जानकारी तेन कुछ सुनवाई।
0: तो सुनवा दिया जाए वार्ता कुपोषण उन्मूलक में रंगीन सब्जियों की भूमिका डॉक्टर आकांक्षा सिंह से।
2: नमस्कार, आज की इस महत्वपूर्ण रेडियो वार्ता में हम चर्चा करेंगे कुपोषण उन्मूलन में रंगीन सब्जियों की भूमिका पर। साथियों, आज के समय में कुपोषण केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय बन चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, छोटे बच्चे, किशोरियां और गर्भवती माताएं कुपोषण की समस्या से अधिक प्रभावित होती हैं। कई बार परिवारों में भोजन की मात्रा तो पर्याप्त होती है, लेकिन भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता। यही स्थिति धीरे धीरे कुपोषण का रूप ले लेती है। अब हम जानेंगे कि कुपोषण होता क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण वह अवस्था है जब शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। इसका प्रभाव बच्चों की वृद्धि, सीखने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति और कार्य क्षमता पर पड़ता है। ग्रामीण भारत में आज भी एनीमिया, विटामिन ए की कमी, कैल्शियम की कमी और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जैसी समस्याएं व्यापक रूप से देखने को मिलती हैं। ऐसे में जो हमारी सब्जियां हैं, रंगीन सब्जियां हैं, एक प्राकृतिक पोषण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं। प्रकृति ने हर रंग की सब्जियों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व और जैव सक्रिय यौगिक यानी बायोएक्टिव कंपाउंड प्रदान किए हैं। यदि हम अपनी दैनिक थाली में विभिन्न रंगों की सब्जियां शामिल करें तो शरीर को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, विज्ञान के अनुसार भोजन का रंग केवल उसकी सुंदरता नहीं दर्शाता है, बल्कि उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की पहचान भी होता है। हर रंग शरीर में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, इसलिए पोषण विशेषज्ञ हमेशा ईट ए रेनबो अर्थात इंद्रधनुषी भोजन अपनाने की सलाह देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की, जिसमें क्या क्या आता है। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, सहजन की पत्तियां, चौलाई, हरी धनिया, ये सारी सब्जियां आती हैं, जिनमें आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं ये। इनमें क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी यानी एनीमिया एक गंभीर समस्या है। लगातार थकान, चक्कर आना, कमजोरी, बाल झड़ना और कार्य क्षमता कम होना इसके सामान्य लक्षण हैं। यदि प्रतिदिन भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन किया जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक होता है। अब बात करते हैं पीले, नारंगी और लाल रंग की सब्जियों की। गाजर, कद्दू, टमाटर, शिमला मिर्च, शकरकंद और लाल गाजर जैसी सब्जियों में बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और कैरोटीनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। विटामिन ए आंखों की रोशनी, त्वचा के स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों में रात में कम दिखाई देना, बार बार सर्दी जुखाम होना और संक्रमण जल्दी होना विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है। टमाटर में पाए जाने वाला लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाने में सहायक माना जाता है। इसी प्रकार गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन बच्चों के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अब हम बात करें बैंगनी और नीले रंग की सब्जियों की, तो जैसे बैंगनी हुआ, बैंगनी पत्ता गोभी हुआ, तो इनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन नामक तत्व, जो कि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक होते हैं और दीर्घकालिक रोगों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार सफ़ेद रंग की सब्जियां, जिसमें होता है लहसुन, प्याज, मूली, फूल गोभी और मशरूम, इनमें क्या पाया जाता है, एलिसिन और सल्फर यौगिक पाए जाते हैं जो संक्रमण में लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। साथियों, रंगीन सब्जियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल ऊर्जा नहीं देती बल्कि शरीर में छुपी हुई भूख यानी हिडन हंगर से भी बचाती है। हिडन हंगर वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक पाई जाती है। आजकल बच्चों में जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वे खाद्य पदार्थ स्वाद तो देते हैं लेकिन पर्याप्त पोषण नहीं देते। इसके विपरीत रंगीन सब्जियां प्राकृतिक, सस्ती और सुरक्षित पोषण का स्रोत हैं। यदि माता पिता बच्चों की थाली में विभिन्न रंगों की सब्जियां शामिल करें तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सकता है। श्रोतागण, अब प्रश्न उठता है कि इन सब्जियों को अपने भोजन में कैसे शामिल किया जाए। सुबह के नाश्ते में वेजिटेबल उपमा, पोहा, चिल्ला या पराठा बनाया जा सकता है। दोपहर के भोजन में दाल के साथ हरी सब्जियां और सलाद शामिल किया जा सकता है। बच्चों को गाजर, चुकंदर, टमाटर का सूप दिया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मिश्रित सब्जियों की खिचड़ी और सहजन की पत्तियों का सेवन अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सब्जियों को अधिक देर तक पकाने से उनमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब्जियों को धोकर काटना चाहिए और कम पानी में पकाना चाहिए और जहां संभव हो सलाद के रूप में सेवन करना चाहिए। साथियों, कुपोषण उन्मूलन में पोषण वाटिका या किचन गार्डन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हर ग्रामीण परिवार अपने घर के आसपास थोड़ी सी भूमि में पालक, मेथी, टमाटर, भिंडी, सहजन, लौकी, तरोई, बैगन और मिर्च जैसी सब्जियां उगाएं तो परिवार को वर्ष भर ताजी पौष्टिक सब्जियां मिल सकती हैं जो कि रसायन मुक्त भी होंगी और इससे भोजन की गुणवत्ता बढ़ेगी और बाजार पर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होगी। इस पर जो है कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर पोषण वाटिका, संतुलित आहार, खाद्य संरक्षण और पोषण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मैं यही कहूंगी कि ग्रामीण महिलाओं को इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी करनी चाहिए जिससे वे खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और बेहतर बना सकें। ग्रामीण युवाओं के लिए भी रंगीन सब्जियों की खेती स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकती है। आज जैविक और पोषण युक्त सब्जियों की मांग शहरों में तेजी से बढ़ रही है। युवा आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और जैविक खेती अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ महिलाएं होती हैं। यदि हम अपनी थाली में विविधता लाएंगे और रंगीन सब्जियों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। आज आवश्यकता है जागरूकता की, सही खान पान की आदतों की और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक स्रोतों को अपनाने की। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर दिन रंग बिरंगे सब्जियां खाएंगे, बच्चों और महिलाओं के पोषण का विशेष ध्यान रखेंगे, पोषण वाटिका अपनाएंगे और अपने गांव को कुपोषण मुक्त बनाने में योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, रंगीन सब्जियां केवल भोजन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, मजबूत प्रतिरक्षा और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
1: डॉक्टर आकांक्षा सिंह से ई उपयोगी जानकारी सुने के मिलल। कुपोषण उन्मोचन में रंगीन सब्जियों की भूमिका, एक ही खाते

0: हाँ पद्मा गिडवानी जी, इतना निमन गीत सुनौलिन मन मनसाइन भैल, एक एक खातिर इनके धन्यवाद दिहल जा और घड़ी कहत या कि अब श्रोता लोगन से लिहल जा विदा, तही के साथे कार्यक्रम पूरा भैल।
1: बैलों के नमस्ते।

0: अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम सुकीर्ति अस्थाना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थियों के भरोसा दिलावे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से शुरू कल गए नया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली धेरे पारदर्शिता सुनिश्चित कैले के उद्देश्य से एगो प्रगतिशील साधन हो। श्री प्रधान नई दिल्ली में CBSE के अधिकारियों के साथ बैठकी के बाद संवाददाता लोगों से बतियावत स्वीकार कैले कि CBSE का कक्षा 12वीं का परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियन आ तकनीकी खराबी के लेके कुछ दिक्कत सामने आई। वहां के विद्यार्थियों के भरोसा दियावली कि चली रहल पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सज्जो शिकायतिन का समाधान कैल जाए।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों बदे कम से कम 2 को भारतीय भाषा के साथ ही 3 को भाषा का पढ़ाई जरूरी कैले से जुड़ल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नीति के चुनौती देवे वाली याचिका पर विचार करी। शीर्ष न्यायालय काल ही केंद्र सरकार बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नोटिस जारी करके 2 हफ्ता के भीतर जवाब मंगले हवे। सर्वोच्च न्यायालय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार की ओर से पहले से प्रभावी 28% GST के बरकरार रखत एक वैध बतौले हवे। शीर्ष न्यायालय कहलस कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म खाली मध्यस्थ नहीं हवे बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता मानल जाए के चाही आ ओ पर वस्तु आ सेवा कर GST लागू होला। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 का संशोधित तारीख आ प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। NTA के मुताबिक परीक्षा अब 31 मई 6 आ 7 जून के आयोजित कैल जाए। बकरीद के नाते तारीख फिर से तय कैल गई हवे। NTA बतौलस कि 31 मई के परीक्षा देवे वाला उम्मीदवारन के प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 6 और 7 जून के परीक्षा बदे प्रवेश पत्र जल्दी जारी कर जाए। देश भर में वीर सावरकर का आज जयंती मनावल जा रहा है। ये मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नमन करत सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि वीर सावरकर का साहस आ देशभक्ति लोगिन के हरदम प्रेरित करत रही। प्रधानमंत्री कहले कि सामाजिक सुधारण पर वीर सावरकर का ढेरे जोर रहा आ ये दिशा में उनकर ज्ञान उल्लेखनीय हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो वीर सावरकर के नमन करत अपन श्रद्धांजलि दिहालयावे। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनावल जा रहा हो। ये मौका पर लोग आज सवेरे ईदगाह आ मस्जिदन में ईद का नमाज अदा कैले आ एक दूसरे के बधाई दिहाले।
5: प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे राज्य में कुर्बानी के फरायद को अंजाम दिया जा रहा है। कुर्बानी का सिलसिला 30 मई को सूर्यास्त तक जारी रहेगा। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ नगर निगम सहित राज्य के सभी स्थानीय निकायों ने भी 30 मई तक अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था चौक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर बसीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में सरगबास हो गई। 91 साल की उम्र में वहां के आखिरी सांस ले ली। सोशल मीडिया पर लोग ये उनकर मशहूर शेर साझा करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हवे। डॉक्टर बशीर बद्र लम्हर समय से डिमेंशिया जैसन गंभीर बीमारी से पीड़ित रहा लें और उनकर जन्म 15 फरवरी 1935 के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला में भइल रहे। मौसम विभाग प्रदेश में कई दिन से चली रहल भीषण गर्मी आ लू से राहत का उम्मीद जतौले हवे। विभाग के हिसाब से आज रात से आवे वाला 3 दिन ले प्रदेश के पश्चिमी आ पूर्वी इलाका के कई जिलन में मौसम का मिजाज बदलल रही। ये दौरान तेज आंधी के बीचे कई जगहों पर बरखा आ ओलो पड़े का संभावना बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं सुकेति अस्थाना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में स्वीकार किया कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आईं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्दी ही जारी किए जाएंगे। देश भर में वीर सावरकर की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीर सावरकर को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा प्रदेश में धार्मिक आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी।
5: प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे राज्य में कुर्बानी के फरायज को अंजाम दिया जा रहा है। कुर्बानी का सिलसिला 30 मई को सूर्यास्त तक जारी रहेगा। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ नगर निगम सहित राज्य के सभी स्थानीय निकायों ने भी 30 मई तक अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था चौक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सोशल मीडिया पर लोग उनके मशहूर शेर साझा करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से राहत की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार आज रात से आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान तेज आंधी के बीच कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: जय जवान जय किसान।
4: हाँ देखा भैया, अपन बैठकी तो शुरू हो गई और पंच भाई ये समय खेती बाड़ी के काम में जोन बटे पुरहर लगल हुई हैं। अभी गेहूँ का कटाई और मड़ाई भैल है तो अब धान की फसल खाती जोन बटे खेत तैयार कर थो हिया।
3: हाँ, जोन धान के फसल के बाद भैल इस समय सबसे उपयुक्त समय है धान के नर्सरी लगौले के। 25 मई से लेके 10 जून तक के समय जोन बा ओके उपयुक्त मानल जाला धान के नर्सरी लगावे खातिर। जे भी किसान भाई लोग धान के खेती करेला कई चाहता करे के बा, वो लोग अपने खेत के तैयारी कई के अच्छी तरह से धान के बढ़िया नर्सरी लगा सकेलें। नर्सरी लगावे खातिर सबसे ज़रूरी बात होला कि स्थान के चुनाव, जमीन कौने जगह पर नर्सरी लगावल जाए तो ओकर अच्छे ढंग से ओकर उत्पाद हो पाई, पैदावार हो पाई, बढ़िया नर्सरी तैयार हो पाई। तो ओके खातिर जो जमीन के चयन करे वहाँ धूप के पर्याप्त मात्रा अले के व्यवस्था रहे, जहाँ पुरहर धूप मिल पावे वह स्थान पर अगर नर्सरी लगावल जाए तो अच्छी नर्सरी हो पाई। और नर्सरी लगावे खातिर क्यारी बनौले के, क्यारी बना के ढंग से नर्सरी लगावे और हर क्यारिन के बीच में थोड़ा सा जगह छोड़े, जोने में एक नाली बने जो नाली से जल निकासी के पर्याप्त व्यवस्था हो सके, जोने से कि वहाँ अधिक पानी नहीं लग पावे। साथे साथे जोन बा जहाँ नर्सरी लगावल जाए शुरुआत में वहाँ नमी के पुरहर व्यवस्था रहे, शुरू शुरू में नमी बनल रहे, यह सब बाती के ध्यान में रख के अगर धान के नर्सरी लगावल जाए तो अच्छा नर्सरी तैयार होई और वहाँ पर अच्छा उत्पाद होई।
4: बिल्कुल, तो देखा भैया अपनी बैठकी में बातचीत तब होते रहे, अब कुछ जानकारी दीवा दिहल जा और सुनवा दिहल जा बातचीत। हल्दी की उन्नत प्रजातियों की खेती है पर जानकारी देता ना डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह और उनसे बातचीत करता ना विनय कुमार। तो ई जानकारी पंच भाई आप सब लें।
5: किसान भाई हमन के आय दूना करे के बा, आय दूना करे खातिर कई उपाय बा। ऐसन बात नहीं कि जौन गेहूँ 21 में 22 में 20 में बिकत बा वो सीधे 44-45 रुपया किलो बिके लगी या कृषि का अन्य उत्पाद सीधे दूना दाम पर बिके लगी। हाँ, आय दूना कैला का मतलब खर्चा में कटौती, जौन उत्पादन आपका भइल बा ओके प्रोसेस करके यानी कि ओकरे रूप में परिवर्तित करके बाजार में अधिक दाम लीहल भी आय दूना कैला का तरीका है। खर्चा में कटौती, रासायनिक खाद से जितना जल्दी हो सके कम ओकर उपयोग कैल जा, लेकिन और भी ऐसा क्षेत्र हुआ कि अगर यह तरह का काम कैल जा तो हमन का बचत ज्यादा होई और लागत काफी कम हो जाए। खास तौर से जब साग भाजी का बात आवे ले तो एक हिस्सा हमन को छोड़ दे ला जा मसाला वाली फसल का, दवा बीरो बना वाली फसल का, जौन अपने रसोई घर का सम्मान बढ़ावे ला। बहुत ऐसा तीज त्योहार हुआ, मांगलिक कार्य हुआ जौना में एकर उपयोग होला, बगैर एकरे उपयोग के या उपस्थिति के हमनी का सब चीज अधूरा रह जाला। अब आप लोग समझ गए लो खब हम आज आप लोगों से हरदी के खेती के बारे में बात कैल चाहतनी और आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। आप हैं प्रभारी अधिकारी औद्यानिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर झांसी। हम आप लोगों के एक बात बतावल चाहब कि बरुआ सागर झांसी में ऐसा जगह है जहां हल्दी, अदरक या कंद वाली फसलन का शोध कार्य होला, प्रजाति निकालल जाली आ कृषि का तकनीक अपनावे का तौर तरीका का होखे एकरे बारे में जानकारी उपलब्ध करावल जाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, ये बताई कि जौन बरुआ सागर जनपद झांसी में स्थित बा, एकर कंद वाली फसल सल्क कंद वाली, खास तौर से हल्दी के बारे में कौना तरह से कार्य चलत बा, आ अच्छा प्रजाति अच्छा उत्पादन क्षमता बढ़ावे खातिर आप लोग का करत हैं ये समय?
6: बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने हमको इसी बहाने जो है किसान भाई से बात करने का मौका दिया। देखिए, पूरे भारत देश में और जो है विदेश में भी जैविक के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और ये हल्दी ऐसी फसल है कि अगर हम इसको जैविक बीज से करते हैं तो हमारा जो जो हल्दी का जो कलर है, सुगंध है, और जब उसको हम गांठे बनाते हैं तो वो रिकवरी रेट सभी में इजाफा होता है। अच्छा, एक बात और कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है धीरे धीरे परिवारिक बंटवारा होते होते रकबा भी छोटा होता गया है, तो हल्दी को हम जो है खुले खेत में भी कर सकते हैं। अगर बाग बगीचा है, मतलब अगर 50% 60% भी अगर धूप में लहा हल्दी को, तब भी हल्दी की खेती हो जाती है। तो इसको हम लोग जो है

0: जैविक विधि से भी कर सकते हैं, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तब भी कर सकते हैं।
1: हल्दी के खेती हमारे यहाँ पूर्वांचल में हर जिला में कुछ न कुछ कही जाला।

0: सलाह दीहल चाहब कि यह साल हल्दी का उत्पादन और बढ़े। यह पूर्वांचल में जहाँ जहाँ हल्दी का खेती होत बा।
1: सबसे बड़ी बात मौसम होता है। अभी आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात औसत से कम होता है, कभी कभी इतना बरसात हो जाता है कि हमारे किसान भाई जल निकासी से परेशान हो जाते हैं, जल भराव हो जाता है। और हल्दी या कंद वाली जितनी फसलें हैं, अगर जल निकास नहीं अच्छा रहेगा तो कंद सड़ जाता है, तो किसान का जो जो बीज जो बोता है, जो उसकी मूल लागत वो भी चली जाती है। और जहाँ तक इसकी अन्य समस्या की बात है, तो कभी कभी अगर मान लीजिए एक ही खेत में हम बार बार खेती कर रहे हैं तो कंद के सड़ने की समस्या आ जाती है। और कभी कभी जो है पत्तियों पे जो है कुछ काले काले भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। लेकिन अगर अब हम 2-3 साल के बाद हम खेत बदलते रहें तो हमको काफी हद तक जो है इन छोटी छोटी समस्याओं से राहत मिल जाती है। लेकिन प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है, तो मौसम का मार किसान बहुत झेलता है और जो है आगे भी मौसम के मार उनके ऊपर पड़ती रहेगी। इससे हम ये कहिए कि मौसम को हम कंट्रोल करने ये तो बस की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं हम कि ऐसा भूमि का चयन करें जो थोड़ी ऊंची हो, जल निकास अच्छा हो तो अच्छा रहेगा।
0: प्रजाति के बारे में आप लोग कौना तरह का सुझाव देला, खास तौर से अपने यहाँ पूर्वांचल के क्षेत्र में उत्पादन बढ़िया होके आ ओकरे अंदर जौन तत्व पावल जाला ओकर भी गुणवत्ता बढ़िया होके।
1: हल्दी में जो है जहां से मैं पढ़ाई किया हूँ, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे बहुत सारे प्रजातियों का कलेक्शन किया गया है और उसमें से कुछ प्रजातियाँ हमारे यहाँ भी हैं। हम लोग जो है जब बस्ती में हम थे तो उद्यान विभाग के माध्यम से राजेंद्र सोनिया और रोमा दो प्रजातियों का हम लोग बढ़ावा दे रहे थे। तो राजेंद्र सोनिया और रोमा प्रजातियाँ अच्छी हैं। और उसमें जो जो आपने कहा तत्व की बात, जो कुरकुमिन होता है, ये तत्व उसमें होता है कुरकुमिन, तो कुरकुमिन की मात्रा भी इसमें ठीक ठाक है, अच्छा है अन्य अन्य के तुलना में। तो हम तो जो यही राय देंगे कि आजाद हल्दी वन है या नरेंद्र हल्दी है या राजेंद्र सोनिया है या रोमा है, इन सब प्रजातियों के किसान भाई लगाएं।
0: एकरे बुआई कैला का सही समय का हा आ विधि का हा।
1: किसान भाई जो है आलू खेती उधर करते ही हैं, तो जैसे आलू की खेती करते हैं ऐसे ऐसी खेती करते हैं। और मिट्टी में नमी अगर पर्याप्त है तो हम इसको मई से लेकर के जून में जुलाई में बो सकते हैं। गुहा से गुहा की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर, और जो जमीन के अंदर जो लगाते हैं कंद को, ये जो है 6 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं।
0: हल्दी की खेती में का आलू की तरह मेड़ भी बनावे को पड़ला या समतल खेत में बुआई का देवे के चाहिए?
1: सर, जो लोग अधिक खेती करते हैं, बड़े बड़े प्लाट वाले खेती करते हैं जहाँ पे जल निकासी कोई समस्या नहीं है, जैसे हमारा एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, जल निकासी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तो अगर देसी हल टाइप का हो तो उसे कूड़ बना करके उसमें भी बुआई कर देते हैं। हमारे पूर्वांचल में, मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, इसलिए हमने देखा है हमारे पूर्वांचल में गुहा बना करते हैं सर।
0: प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई के हिसाब से एकर बीज दर कितना है आ बीज का शोधन कैसे करे के चाहिए?
1: सर जो है अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 7 कुंतल लगता है 1 एकड़ में। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 20 से 25 कुंतल बीज लग जाता है इसमें। एक एक कंद जो हम बोते हैं इसका 25 से 30 ग्राम से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो जो है कंद जो होता है, नया कंद बोना चाहिए, पुराना जो है गांठ नहीं बोना चाहिए, जिसको हम लोग लोकल भाषा में वहाँ गोरखपुर में फेद्दा बोलते हैं, तो उसको नहीं बोना चाहिए। जो नया नया राइजोम निकला होता है उसी की बुआई करनी चाहिए। और जहाँ तक शोधन की बात है सर, तो कार्बेंडाजिम बहुत अच्छी दवाई है। अगर 2 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना लीजिए और उसमें इन कंदों को हम जो है 1-2 दिन बुआई के 1-2 दिन पहले उसमें डुबो दें 15-20 मिनट के लिए, और फिर निकाल करके छाई में सुखा लें तो अच्छा रहता है।
0: डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी दिहली कि हल्दी का बढ़िया प्रजात कौन है का कौना विधि से बुआई कैल जा तो अच्छा उत्पादन मिल सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हल्दी की उन्नत प्रजातियों की खेती ए विषय पर जानकारी देते रहें डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह और आपसे बतियात रहें विनय कुमार। अब आई अपने किसान भाई लोगन के सुनवा देवल जाए एक गो गीत।

0: हाँ भाई, देखो अपनी बैठकी में मन मन सायन भी भइल और पंच भाई जोन बटे अपनी खेती बाड़ी की कार्यक्रम के साथ साथ पशुपालन तक करबे करेला लोग। तो आज अपनी बैठकी में से यही से संबंधित सुनवा दिल जा भेंटवार्ता, दुधारू पशुओं के लक्षण ए पर जानकारी रखता डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, उनसे बातचीत करता है कृष्णचंद।
1: डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी, आप पशुपालन वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर में। डॉक्टर साहब, आपके सबसे पहले हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, देखी जो दूध बा, दूध के संपूर्ण आहार कहल जाला, जेकरे घरे गाय भैंस बाटी तेकरे लिए तो दूध का कोनो कमी नहीं बा, लेकिन जेकरे घरे गाय और भैंस नहीं बाटी तो मनई कितना पैसा देके खरीद के जौन बा खाई। और दुधारू पशुओं के अगर बात कर जाए तो एक युग जमाना वो रहा कि जब थोड़के रुपया पैसा ले के लोग निकलत रहे हैं तो दुधारू जानवर मिल जाते रहे हैं, लेकिन आज के समय जो परिस्थिति बा, स्थिति बा, वो बिल्कुल बदल गई बा। मनई थैली भर के रुपया ले जाता तब कहीं एगो गाय या भैंस खरीद के लावाता, दुधारू पशुओं का दाम सुन के मनई जौन बा घबरा जा रहा बा। तो ऐसा स्थिति में हम आपसे ये जानल चाहब कि अगर केहू घरे से निकला था और दुधारू जानवर खरीदे जा रहा बा तो वो कैसे जाना है कि जौन वो जानवर खरीदे जा रहा बा ई जौन बा बढ़िया दूध दे के ना दे, का लक्षण ओकर बा?
2: देखिए, ये हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही अनिवार्य विषय है कि हमारे पशुपालक भाइयों को जानना चाहिए कि एक दुधारू पशु के क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, क्योंकि जो भी श्रम, समय, पैसा आप खर्च करते हैं पशुओं में, वो अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, यदि वो पशु अच्छा उत्पादक नहीं होगा तो ऐसी दशा में हमारे पशुपालक भाइयों की आर्थिक क्षति होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको दुधार पशुओं की, जब चयन की बात आती है, जब पशुपालक भाई चयन करने जाते हैं तो इसमें कई दशाएं होती हैं। एक तो ये होता है कि जब हम बच्चियों या पड़ियों का जब चयन करते हैं,
1: जी
2: जिसमें हमको उसके दूध उत्पादन का कोई अंदेशा नहीं होता है कि कितना दूध उत्पादन वो दे सकती है, तो ऐसी दशा में एक तकनीकी उसका नस्ल उसको परिभाषित बहुत हद तक कर देती है कि यह पशु भविष्य में चल के कितना अच्छा उत्पादन करेगा। तो जहाँ तक बच्चियों पड़ियों की बात है तो दुधारू पशुपालन के रूप में हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो गाय और भैंस को ही पालते हैं।
1: जी
2: तो गाय की जो अच्छी अच्छी नस्लें हैं, जैसे हमारी देसी नस्लों की अगर बात करें तो उसमें साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, देवनी है, इनको वर्गीकृत किया गया है। साथ ही द्विकाजी नस्लें जैसे आपकी थारपारकर है, हरियाणा है। अब जहाँ तक भैंस की बात करें तो भैंस में भी जो अच्छी नस्लें हैं उसमें मुर्रा, हमारे जो जितने पशुपालक भाई हैं लगभग सभी लोग मुर्रा नस्ल से प्रचलित हैं। ऐसे और इसके अलावा भी नीली रावी है, जाफराबादी है, और आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपद में देखेंगे तो एक नस्ल भदावरी भी काफ़ी हद तक प्रचलित है,
1: जी
2: उसमें वसा की मात्रा या घी की मात्रा बहुत अधिक होती है।
1: अच्छा
2: तो ऐसी दशाओं में जब हम जो पशु दूध नहीं देते हैं उनके चयन में नस्ल को आधार बनाते हैं,
1: अच्छा
2: जिससे कि भविष्य में उत्पादन अच्छा से अच्छा प्राप्त हो सके। अब दूसरी दशा आती है कि जो पशु दूध दे रहे हैं उनका चयन करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसमें क्या है, एक तो नस्ल भी पे भी हमारे पशुपालक भाई चयन कर सकते हैं,
1: जी
2: दूसरा सबसे अच्छा उसमें जरूरी है कि आप उसका दूध उत्पादन ही देख लें
1: जी
2: जिस समय वो ब्याध की कंडीशन में है, कि वो कितना दूध दे रही है। बस उसमें सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि दरअसल जब वो लोग व्यापारी से खरीदने जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को, तथ्यों को छुपा देते हैं। जैसे आप केवल एक समय का दूध उत्पादन देख के पशु का सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे, तो वो हो सकता है कि आप उसके उत्पादन को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जब जिस पशु को खरीदने जाएं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, दूध देने की दशा में, तो उसको कम से कम 3 समय तक लगातार दूध उसका दुहवा देख लें, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन उसका जो शुद्धता है प्रमाणित हो सके कि वो कितना पशु उत्पादक। तीसरी दशा ये बनती है कि पशु दूध की दशा में नहीं होता, प्रौढ़
1: अच्छा
2: पशु है। ऐसी दशा में हम किन-किन लक्षणों को देखें जिससे कि उसका चयन अच्छे उत्पादक के रूप में हो सके?
1: जी
2: तो सबसे पहला बिंदु इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे पशु में उसके आकार पे जाते हैं।
1: मतलब कैसा आकार रही तो ये बुझे कि बढ़िया दूध दे।
2: इसमें आकार ये कहा जाता है कि जितने अच्छे दूध उत्पादक पशु हैं उनका तिकोना शेप होना चाहिए। तिकोना जिसको ट्रायंगल शेप भी हम लोग कहते हैं, उसमें ये ध्यान देना होता है कि जो पतला सिरा, जैसे एक त्रिभुज बनता है तो उसका पतला सिरा मुंह की तरफ हो और चौड़ा सिरा उसके पूंछ की तरफ जाता है।
1: मतलब पाछा जो भारी होकर
2: हाँ उसका
1: चौड़ा होकर
2: चौड़ा होना चाहिए और आगे की तरफ पतला होती है। तो इस तरह से एक तिकोना आकार हो। दूसरा इसका एक करेक्टर और है, इसमें आप देखेंगे कि ऐसे पशु जिनके पीछे की तरफ आप पूंछ की तरफ खड़ा हो जाइए तो इसके एक होता है मिल्क स्ट्रिप, जो पूंछ से और थन के बीच में एक लाल सी पट्टी होती है। जिस पशु का ये पट्टी जितने चौड़ा होता है उसको भविष्य में अच्छा उत्पादक माना जाता है। दूसरा आप एक और लक्षण बहुत अच्छा है, हमारे पशुपालक भाई भी इस पे भी ध्यान देते हैं।
1: अच्छा एक चीज हम आपसे और जानना चाहब, कई लोग चर्चा कर रहे हैं पशुपालक भाई कि भाई हम तो चमड़ी देख के पहचान लेला, तो चमड़ी देख के कैसे पहचानल जा सकेला?
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसमें चमड़ी पतली होनी चाहिए
1: जी।
2: जिस पशु का चमड़ी मोटी होती है उसका उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता है। जिसकी पतली होती है और साथ ही साथ उस पे बाल बड़े ना हो, बड़े बहुत बड़े बड़े बाल के जो पशु होते हैं वो अच्छे उत्पादक नहीं माने जाते।
1: अच्छा देह पे जेकरे छोटा बाल लाए,
2: हाँ छोटा बाल हो पतली चमड़ी हो तो ऐसे पशुओं का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप थन को देखते हैं तो थन पे भी आप देखते होंगे उस पे बहुत नसें होती हैं, उसको हम लोग दुग्ध सिरा कहते हैं, मिल्क वेन। इन काफ़ी इनका उभरा होना चाहिए। जितने पशु आप जब चयन करते हैं तो इसका ये जरूर ध्यान रखें कि इन नसें जितने अधिक उभरी होती हैं उतना ही उसमें उत्पादन क्षमता भविष्य में प्राप्त करने की संभावना रहती है।
1: आपके कहले का मतलब ये बा कि जो सामान्य चमड़ी बा ओमे जोन बा उस सिरा देखा पड़े, नस देखा पड़े
2: जी, तो उसमें ऐसे होने से ये प्रतीत होता है कि थन में काफ़ी जो सर्कुलेशन है, रक्त का संचार है, क्योंकि संश्लेषण के लिए रक्त का संचार बेहतर होना चाहिए। तो जब अयन में दूध का संश्लेषण होता है तो जिसमें जितने संचार अच्छा होता है उसका उत्पादन अच्छा होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ पे और आपको ध्यान देना है कि जब पशु को दुहा जाता है दोहन करने के बाद वो थन पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए।
1: अच्छा लोग कहने लगे एकदम स्पंज के तरह से हो जाए
2: जी, उसमें जब सिकुड़ जाता है और जब दूध शाम तक, देखिए सुबह आपने दूध निकाल लिया और उसको सिकुड़ जाए फिर शाम तक दूध उसमें भर जाए तो फिर अपने आकार में आ जाए, ऐसे थन को अच्छा माना जाता है।
1: मतलब कोनो भी जानवर अगर वो खरीदा जाता है तो पहले उसके दूध के देख सकल है
2: जी। हमने पहले ये आपको एक इस बिंदु पे चर्चा किया है कि जिसमें दूध देने वाले कंडीशन में तो उसमें आप पशु को पूरा दोहन कर लें और तीन बार दोहन करें
1: जी जी,
2: एक बार के ही दोहन से नहीं। तो पूरा दूध निकालने के बाद अगर आप करते हैं तो उसका चुनाव अच्छा हो जाता है।
1: अच्छा ये तो आप बिल्कुल सही कहें, कहें से कि कई बार जब अपन पशुपालक भाई शिकायत कर लें भैया जब दूह ले रही तब तो बहुत दूध दे ले रहा लेकिन हमारे यहाँ आए तो दूधवा कम हो गई। तो एक अलावा और कोनो लक्षण बा जौने के आधार पर जौन बा पहचानल जाए कि जानवर बढ़िया दूध दे
2: जी? इसमें देखिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक उम्र का हम ले लेते हैं। उम्र का हमारे पशुपालक भाई भी जो गांव में तकनीक का प्रयोग करते हैं दांत का, वो अभी भी प्रचलित तकनीक है। तो उसमें जब जैसे दो दांत, मतलब एक जोड़ा दांत निकलने का, फिर दो जोड़े, तीन जोड़े, तो जितना है जोड़ा, जैसे पहला जोड़ा लगभग ये माना जाता है कि पौने दो साल में निकल आता है, दूसरा जोड़ा ढाई साल पौने तीन साल में निकलता है। इस तरह से आप उम्र को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बूढ़े पशु को, अगर आप ज़्यादा उम्र दराज पशु को चुनाव करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा इसके।
1: अच्छा ब्यात में जौन बा जैसे मान ली कि कोनो जानवर पहले बार बच्चा दे ले बा और कोनो जानवर का दूसरका ब्यात है या तीसरका ब्यात है, तो कोने ब्यात में जौन बा अगर दुधारू पशु है तो कोने ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध दे सकेला?
2: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए ये हमारे पशुपालक भाइयों को भी जानना चाहिए, हम जब गाय का चुनाव करें तो गाय के चुनाव में पहले और दूसरे ब्यात की आपको ज़्यादा चुनाव करना चाहिए। ऐसे गाय को लेना चाहिए जो पहले और दूसरे ब्यात की, क्योंकि इसमें उनका अधिकतम उत्पादन होता है
1: जी।
2: और जब भैंस का आप चुनाव करने जाएं तो दूसरे और तीसरे ब्यात के पशु का आपको चुनाव करना चाहिए।
1: तो मतलब ई सावधानी जन में बरते के पड़ी। एक अलावा जौन जानवर के खैला पीला के आदत होला, ऐसे भी कुछ अंदाजा लगाओ जा सकेला?
2: एकदम, क्योंकि देखिए दूध उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से पशु के आहार ग्रहण करने पे भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्योंकि जो पशु ज़्यादा से ज़्यादा आहार लेता है, खाता है, तो उसका उस दूध उत्पादन में उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसे पशु का चुनाव हो जाता है जिसमें आप देखते होंगे कि पशु को आप कितना भी अच्छा चारा दाना दे दीजिए, हरा चारा दे दीजिए, तो वो खाने में बहुत अच्छा नहीं होता है, वो अपनी अरुचि दिखाता है, जिससे कि उससे अच्छा पशु होते हुए भी अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा सकता।
1: जी डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी, दुधारू पशुओं के का लक्षण बा, अपन पंच भाई कैसे पहचाने कि ई पशु जन बा बढ़िया दूध दे सकेला, एक कुल बारे में आप इतना निम्न जानकारी दे ली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ भाई देख, पंच भाई लोन के मन मनसायन भी भेल, पुरहर जानकारी भी भेल, लेकिन हमन का समय से बदल बाणी जा और घड़ी इशारा कर रहा बा पंच भाई से विदा लेवे के। तो पंचों
3: जय जवान जय किसान।

अभी कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। राधिका कुमारी, पिता का नाम राजू। राधिका कुमारी की उम्र करीब 19 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट 1 इंच है, रंग गोरा है। ये दिनांक 27 अगस्त 2025 से सुखपुरा बलिया से लापता हैं। राधिका कुमारी के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी नगर जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक और गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। ऋतिक यादव, पिता का नाम स्वर्गीय राजेश यादव। इनकी उम्र करीब 15 वर्ष है, लंबाई करीब 4.5 फीट है। ये दिनांक 16 फरवरी 2025 से हनुमानगंज बलिया से लापता हैं। यदि आपको ऋतिक यादव के बारे में कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी सुखपुरा जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मनीषा उर्फ अंशु, पिता का नाम विश्वनाथ। इनकी उम्र करीब 21 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट 1 इंच है। ये दिनांक 2 मई 2026 से शिवनगर सिद्धार्थनगर से लापता हैं। मनीषा के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थनगर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। संध्या, पिता का नाम चिन्नीलाल। संध्या की उम्र करीब 19 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है, सांवला रंग है। ये दिनांक 30 अप्रैल 2026 से सिद्धार्थ नगर से लापता हैं। यदि आपको संध्या के बारे में कोई सूचना मिले तो आप थानाध्यक्ष पिपरा पांडे जनपद सिद्धार्थ नगर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सरिता साहनी, पिता का नाम गुलशन साहनी। सरिता साहनी की उम्र करीब 22 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है। ये दिनांक 2 मई 2026 से ग्राम सहरी सिद्धार्थ नगर से लापता है। सरिता के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ नगर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत
3: मन की बात है, जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं। राजेंद्र यादव साथियों के गायक लोकगीत।

0: वाहनों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे राजेंद्र प्रसाद यादव व साथी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार। देश हमार में आज काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे उगम चौधरी।
1: कहवा गईल समाज आज ताखे पर धैल सिलाज

0: खातिर लोग दूसरा के घर लेंगी आवत बा।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम देश हमार, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें आज आप गुजराती लोकगीत सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 7:18 और 40 सेकंड हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगे।

0: अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन, कहा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार, प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत

0: किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोडमैप तैयार करने में सहायक होगा।
1: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की, इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में, इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को कर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज लखनऊ में Zone 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AK शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
3: लखनऊ ऑलरेडी शिवरे में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
0: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
4: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन

0: लगाया है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कंप्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
1: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है खानदानी शफाखाना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अगला गाना तुसी सुनोगे पंजाब के तड़कीले ते पड़कीले नौजवान गबरू घातक दी आवाज। इस गाने की फरमाइश की है लुधियाने तो सुखविंदर सिंह, होशियारपुर तो बेबी बेदी ते अजरौर तो मिंटू जी ने। पेश है बंब गाना।
2: क्योंकि

जय कराती है बेबी क्रेजी है नाचे क्लब में जोर लगा के बेबी मैं बड़ी तेजी है बिना पंख के मोर बना दे ये माल थोड़ा मवाली है हर सेंटेंस में गाली है ना बम बहना पटाखा है ये लड़की पूरी दिवाली है।

0: ले, रुक जा बेबी सांस तो ले ले।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: फिल्मफोर्स के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है वार्ता भारतीय परंपरा के संवाहक निवास मिश्र। वार्ताकार हैं डॉक्टर अखिल मिश्रा।
1: संस्कृति परंपरा मानव चित्त की खेती है। मानव चित्त अपने वातावरण, पर्यावरण, लोक मान्यताओं से निर्मित होता है। इन्हीं लोक मान्यताओं के गर्भ से संस्कृति या परंपराओं का जन्म हुआ है। विद्यानिवास जी का मानना है कि लोक शास्त्र से ऊपर है और लोक मन भी शास्त्र का अंग होकर ही प्रतिष्ठित होता है, किंतु वे शास्त्र को और जाँचने परखने की बात करते हैं। उनका वैष्णव चित्त शास्त्र का उपासक है, जिससे पर मुखापेक्षी ना हो सके, पर वे जड़ शास्त्र के उपासक नहीं रहे। बात बात में वे विदेशियों का मुंह जोहना पड़े, अपना विकास अपने देश में खरादे हुए मूल्यों से, पैमानों से नहीं हो सकेगा तो क्या पश्चिम से गढ़े गए पोथियों से होगा, जहाँ की संस्कृति ही भिन्न है, भाषा भी हमसे भिन्न है। किंतु विद्यानिवास जी ने परंपरा की मार को भी निकट से देखा था। उसकी ठेस को जब वे महसूस करते हैं तो उनका मन आधुनिक हो जाता है, परंतु जब वे आधुनिकता की विडंबनाओं को देखते हैं तो उनका मन भारतीय परंपरा की ओर झुक जाता है। यही वस्तुतः विद्यानिवास जी का समग्र परंपरा एवं आधुनिकता बोध है। विद्यानिवास जी के निबंधों में लोक एक व्यापक परिवेश में प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने भारतीय लोकगीतों में निहित भाव संपदा को भली भांति पहचाना है।

इस कारण उनके लेखन में सरसता, मधुरता और आत्मीयता है। वे परंपरा को जितना समझते थे उतना परिवर्तन को भी। लोक संस्कृति और शास्त्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यानिवास जी कहते हैं, लोक में रचा बसा संस्कार लोक संस्कृति है, जो विविधता को समेटे है वह जीवन रस का स्रोत रही है। हिंदू शास्त्र बड़े बीहण हैं, उनको समझने के लिए उनको पूरा देखना पड़ता है, उनके साथ ही निश्चित रूप से लोकाचार को भी देखना पड़ता है। लोकाचार भी शास्त्र बनकर ही प्रतिष्ठित होता है। विद्यानिवास जी भारतीय लोक जीवन के सनातन प्रवाह का अवगाहन करते हुए कहते हैं कि मैं अगर अजनबी शहरों और परिवेशों में आत्मीयता की पुकार लगा सकूं, तो इसलिए कि मेरा एक गांव घर ऐसा है जो बराबर मेरे साथ है। इस प्रकार लोक जीवन के प्रति साझेदारी की भावना ही भारतीय परंपरा है। उनके गवीं घर का तात्पर्य सिर्फ स्थल विशेष नहीं बल्कि रचनाकार की अपनी तई जीवित संस्कृति और लोक संस्कृति है। लोक जीवन से जुड़े लोक गीतों, लोक उत्सव की अंतर्निहित छटा उनके निबंधों में प्रवहमान है। मोरे राम के भीजे मुकुटुआ, लक्ष्मण के पटुकुआ, सीता के सिनुरुआ, त राम घर लौटी हैं। राम के घर लौटने की आशा कामना ही भारतीय लोकमन का विश्वास है। भारतीय परंपरा की जब भी बात होगी तो उसके वर्तमान को रखते हुए होगी। वर्तमान में वह कितने समाचरित रूप में है, कितना उसमें वेद समाया हुआ है, कितना उसमें बुद्ध की वाणी है, कितना उसमें किनकी वाणी है, कितने असंख्य साधना करने वाले साधुओं, संतों और फकीरों की वाणी है, गुरु नानक जैसे महान साधकों की वाणी है जो कहते हैं गगन के थाल में चंद्र सूर्य दीपक जरें। कितनी बड़ी आरती की चर्चा है उसमें, पूरा आकाश थाली है, आरती की थाली है और चंद्रमा एवं सूर्य उसमें दीपक के रूप में रखे हुए हैं, जल रहे हैं। हवा धूप बनकर सुगंध फैला रही है, सारी नक्षत्र मालिकाएं मोती बनकर उस थाली में गिर रही हैं। इस विराटता की कल्पना इसके भीतर है, इसके साथ ही साथ लघुत्तम की कल्पना भी इसके भीतर है, लघुत्तम की चिंता भी इसके भीतर है, छोटे से छोटे तृण की भी चिंता इसके भीतर है, जो बार बार कुचली जाती है, बार बार पसरती है और ज़्यादा पसरती है। इसी तरह से हे मनुष्य तुम पसरो, दुर्निवार जिजीवसा हो तुम्हारे भीतर, जिस तरह से धूम में होती है। भारतीय परंपरा के भीतर एक तरफ कालिदास का मजा हुआ काव्य है तो दूसरी तरफ कबीर की अनपढ़ सच्चाई है। इसके भीतर रैदास का आमंत्रण है कि मैं अपनी पानी बन करके प्रभु तुम्हारे चंदन की सुरभि दूर दूर तक पहुंचाऊंगा। इसी भारतीय परंपरा को विद्यानिवास जी अपने निबंधों में व्यक्त करते हैं। मिश्र जी के निबंधों में प्रायः घूम फिर कर परंपरा और संस्कृति की गवेषणा आ ही जाती है। उनके साहित्य सृजन का मूल आधार एवं केंद्रीय संवेदना है आंगन का पंछी, नदी नारी और संस्कृति, हिमालय और अस्थि की पुकार, हिमालय, कटहल और होरहा, कदम की फूली डाल, कल्पवास उनके निबंधों की विषय वस्तु और शीर्षक बनते हैं। इनमें ऐसी आर्द्रता, शोभा, क्षोभ और उदासी का घोल पाठक को सरोबार करती है कि ये निबंध काव्यात्मक ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। परंपरा बंधन नहीं है, भारतीय परंपरा तथा भारतीयता की पहचान जैसी कृतियां विद्यानिवास जी की वैचारिकता के आधार हैं। उनका मानना है कि इस लोक में मनुष्यों का समूह ही नहीं, सृष्टि के चर अचर सभी सम्मिलित हैं। पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत सब लोक हैं और सबके साथ साझेदारी की भावना लोक दृष्टि है। विद्यानिवास जी मध्यकालीन संतों एवं कवियों को याद करते हैं जिन्होंने पुराने जीवन मूल्यों की गठरी को फेंक कर विघटित स्वर भेद से खंड खंड हुए समाज को जोड़कर अखंड बनाने की चुनौती दी। पंडित जी आधुनिकता एवं आस्था के बीच अंतर विरोध नहीं पाते बल्कि हमारे समाज में अपने को शिक्षित और आधुनिक समझने वाली पश्चिमोन्मुखी लोगों द्वारा भारतीय जन को पिछड़ा हुआ या रूढ़िवादी, मूर्ख, गंवार समझे जाने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं और दोनों के बीच की संवेदनात्मक दूरी को समाप्त करने की आकांक्षा में पर्याकुल होते हैं, क्योंकि आम आदमी उनके लिए नारा नहीं है, मुखौटा नहीं है, वह उनके भीतर बैठ कर लिखाता है। इसलिए वे बुद्धिवाद से घबराते हैं, समझदारी से ज़्यादा महत्व साझेदारी को देते हैं। सपने कहाँ गए निबंध संग्रह में लेखक ने आज़ादी के बाद के 50 वर्षों का लेखा जोखा संग्रह किया है। विद्यानिवास जी के निबंध परंपरा बंधन नहीं के प्रथम प्रकाशित प्रारूप

0: को पढ़ने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गोरखपुर आए थे तो वहाँ एक विशाल जनसभा में उन्होंने कहा था कि मैं इस धरती को प्रणाम करने आया हूँ जिसने विद्यानिवास मिश्र जैसा विचारक दिया है। मैं रास्ते में उनका निबंध पढ़ते आया हूँ और संतोष का अनुभव हुआ है। हिंदुस्तानी दृष्टि से हिंदुस्तान को समझने की एक नई शुरुआत हुई है। मैं इसको बहुत शुभ लक्षण मानता हूँ। विद्यानिवास जी की सृजनात्मक संवेदना की जड़ें संस्कृति आंचलिक संस्कृति में है। लोक संस्कृति उनके लेखन का अभिन्न अंग है। भारतीय वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक खूब रमा है। वे रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहते, न बधे रुधे तालाबों में छपकोड़ी खेलना चाहते हैं। लोक जीवन अनुभूति की उन्हें गहरी पहचान है। विद्यानिवास जी ने अपने संस्कृति विमर्श में भारतीय संस्कृति का मूल आधार तितिक्षा स्वीकार किया है, जिसकी सही अर्थ में मूर्त व्यंजना दुर्वा ही है। तितिक्षा के कारण ही उस संस्कृत की एक शाखा उच्छिन्न होते ही दूसरी शाखा निकल आती है। उस पर जितने ही मार्मिक आघात हुए हैं उनसे ही रातों रात सहस्र उमंगों के साथ वह पनपी है। विद्यानिवास जी का मानना है कि परंपरा के रस की गहराई अवधारणा और विस्तार के बोध के बिना आधुनिक होने का अर्थ परिवेश से उखड़ना और बौना होना है, जो आज के अधिकांश समकालीन लेखन में एक तड़प बेचैनी व्याकुलता अजनबीपन का विष अनजाने घोल रहा है। पढ़कर तनावग्रस्त हो जाना विषादग्रस्त हो जाना पड़ता है। शब्द अर्थ खोते जा रहे हैं। यह सब सांस्कृतिक संकट है। इसका निवारण भारतीय संस्कृति एवं उसके विपुल वांग्मय में है। विद्यानिवास जी बार बार भारतीय वैष्णव परंपरा के राधा की वरिलता को अपने पाठकों को देने की चेष्टा करते हैं। राधा भाव सभी धर्मों मतों मतांतरों तत्व निरूपणों ज्ञान विज्ञान से बहुत ऊपर की चीज है, जहाँ मिट जाना ही पाना है। आज के जीवन में जो सब कुछ पा लेने की दौड़ व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और राष्ट्र से आगे पूरी मानवता में मची हुई है, उसका परिणाम उनका साहित्य और वे जानते थे चेतना की वीणा बजे और चर अचर समग्र मानवता उसकी दिव्य मधुरता में जिए, ऐसी कामना उनके साहित्य में है। विद्यानिवास जी ने भारतीय परंपरा का एक विशद अध्ययन अपने निबंधों में प्रस्तुत किया है। उनका मन गाँव का मन है, जिस गांव में संपूर्ण भारत बसता है। पंडित जी अपने निबंध गांव के मन में इस बात को रेखांकित करते हैं कि संपूर्ण भारतीय मन गांव के मन से निर्मित हुआ है। भारतीय अपनी पहचान अपनी परंपरा अपने जीवन मूल्यों के साथ जहां भी हैं पूरी ठसक के साथ मौजूद हैं। लोक उत्सवों को पंडित जी ने अपने निबंधों में खूब जगह दी है। फागुन दुई रे दिना निबंध में विद्यानिवास जी ने बताया है कि फागुन में भारतीय मन हरा भरा हो जाता है, मन के सारे कचोट बाहर आ जाते हैं। वे मानते हैं कि भारतीय उत्सव उल्लास हमारे मन को अकुंठ बनाते हैं। कुंठा जो आधुनिक मानव की नियति है, भारतीय उत्सव उससे उसे मुक्त करते हैं। विद्यानिवास जी ने विस्थापन की समस्या को अपने निबंधों का विषय क्षेत्र बनाया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में उन्होंने इस विषय को विस्तार दिया है। विद्यानिवास जी ने भारतीय परंपरा के गहरे अन्वेषक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपने को भारतीय संस्कृति के लिए द्राक्षा की तरह निचोड़ दिया है। महाभारत के काव्यार्थ नदी नारी एवं संस्कृत जैसे निबंध में उन्होंने भारतीय परंपरा का गहरा अन्वेषण किया है, उसे एक नई पहचान दी है। उनके मूल्यवादी तत्वों को बाहर लेकर आए हैं, जिसे युगों युगों तक भारतीय मन पढ़कर प्रफुल्लित होता रहेगा। उनकी रचनाओं से गुजरना भारतीय परंपरा एवं संस्कृत से गुजरना है। वे एक साथ लोक एवं शास्त्र दोनों का अवगाहन कराते हैं, पाठकों को उस रस में भिगोकर आनंदित करते हैं, सत्य चित्त आनंद में ले जाते हैं। पंडित जी को याद करना अपनी पूरी परंपरा को याद करना अपनी पूरी नियति को याद करना है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, वार्ता प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर अखिल मिश्रा। विषय था भारतीय परंपरा के संवाहक विद्यानिवास मिश्रा। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुगूज। इसमें आज आप जगजीत सिंह, अनुप जलोटा, लता मंगेशकर के गाए सुगम संगीत सुनेंगे।

0: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

पंकज उदास के गए इस गज़ल के साथ ही फिल्म संगीत सुगम संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की
1: देश
0: पहचान
1: से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि
0: जारी। शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।

0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है? बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
2: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
2: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मियां आती हैं, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
2: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, देड़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें, जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसपे से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 7 बजे के बाद आप जाए, धूप रहते मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
2: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का, और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
2: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
2: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोताओं इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: कंट्रीवाइड इनसाइट्स।
3: This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
4: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
5: Thank you.
4: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
6: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
4: The Assam Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill yesterday, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such a legislation after Uttarakhand and Gujarat. Could you please explain elaborately about the UCC and also in simpler terms talk about what the bill is all about and what does it aim to achieve?
5: As you told, that is the third state in India to enact UCC, Uniform Civil Code. Silent features of bill is all about banning polygamy. That is the first thing. Second thing is about living relationship. And third thing is about giving equal rights to the woman.
4: Right. And what does the bill aim to achieve? Can you elaborate a bit?
5: Look, in Assam, it's a bit tricky. There are a lot of tribals who are also there who follows the customary laws of their own tribe and all that. But they have been excluded from this bill. They are not under the purview of this bill. What this bill intends to do, aims to do, is getting equal rights to everybody other than tribals. There are a lot of tribal population in Assam, like Karbis, like Boros, who have been excluded from the bill. But UCC aims to give a uniform legislation to all, in a sense, rights of marriage, if you tell about rights of divorce and the rights of a woman in case of a divorce, what she gets and all that. So that UCC has brought in. It's nothing very different because in other laws, Article 44 also mandates that. But UCC, in a way, aims to give a uniform level playing field to everybody other than tribals.

कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें। इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

उदित नारायण के गाए फिल्म तेरे मेरे सपने के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। इसमें आज आप पहले सुनेंगे पद्मा तलवलकर का गायन राग केदार, तत्पश्चात पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग झंझोटी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। चार दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।